मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, आज मंगलवार का दिन शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं पारंपरिक राम भजन राजेंद्र काजरू के स्वर में।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं कि देवी गीत राजीव गांधी के स्वर में।

0: गायक कलाकार राजीव गांधी की आवाज में देवी गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। मृदुल गुप्ता के वाचन स्वर में सुनते हैं ईमानदारी विषय का लेख।
1: ईमानदारी प्रदर्शन का विषय नहीं है और न ही इसके एवज में कोई आकांक्षा रखनी चाहिए।

0: वृत्तांत स्वांतः सुखाय और परहिताय का विषय है। ये सच है कि आज जब जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ईमानदारी के पथ पर चलने का संयम किसी तपस्या से कम नहीं। पर एक सच ये भी है कि ईमानदारी के पथ पर चलते हुए जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो किसी और तरह से हासिल नहीं हो सकती। ईमानदारी मन मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है और ये शीतलता एक ईमानदार व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में भी नजर आती है। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आसपास के लोग या दफ्तर के सहकर्मी भ्रष्टाचार के पैसे से जब शानो शौकत से रहेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, उनके पास महंगी गाड़ियां होंगी, उनके बच्चे बड़े नाम वाले स्कूलों में पढ़ेंगे, तब इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में ही मन को नियंत्रित करने की कठिन परीक्षा होगी। अगर आप विचलित हो गए तो इसका मतलब ईमानदारी को आपने पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया। अभी मन को और तपाने की जरूरत है। मन को नियंत्रित कर लेने के बाद ईमानदारी की राह आसान हो जाती है। फिर इंसान जीवन की चमक दमक से प्रभावित नहीं होता। सादगी और सच्चाई जीवन का उद्देश्य बन जाती है। जब जीवन में सच्चाई, सादगी और उसूल हो तो इससे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है। उसूलों के बिना जिंदगी दिशाहीन होती है। सादे जीवन में ही उच्च विचार पनपते हैं। ईमानदारी की राह पर चलते हुए मन को एकाग्र और संयमित करना भी जरूरी है। ईमानदारी को किसी तय सांचे में नहीं ढाला जा सकता। इसका कोई निश्चित रूप स्वरूप भी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए ईमानदारी के अलग अलग मायने हैं। एक विद्यार्थी के लिए अध्ययन ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो पूरे मनोयोग से अध्ययन करता है और नकल किए बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उस विद्यार्थी को ईमानदार कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी ऑफिस के क्लर्क या अधिकारी, पुलिसकर्मी, चिकित्सक, जज या किसी पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रहा है तो वो भी ईमानदार कहा जाएगा। चाहे कोई किसान हो, सरहद पर तैनात जवान या खेल के मैदान में अपने प्रदर्शन से देश को पदक दिलाने वाला खिलाड़ी, जो अपने दायित्वों को समझते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर ईमानदार है। इसके ठीक विपरीत कोई कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही बरतता है तो वो कतई ईमानदार नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि ईमानदारी का संबंध सिर्फ पैसे के लेन देन या रिश्वतखोरी से नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कार्यालय से लेकर घर और अपने पारिवारिक संबंधों में भी ईमानदार रहने की जरूरत है। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी की दरकार है। इसके बिना जीवन बनावटी और काले लोहे पर दिखावे के लिए चढ़ी सुनहरी चमकदार परत की तरह हो जाता है, जिसका रंग कभी भी उतर सकता है और सच्चाई सामने आ सकती है। ईमानदारी की राह पर चलने का एक अचूक नुस्खा है कि अपने मन को नियंत्रित कर उतना ही व्यय करें जितनी आय हो। ऐसा कर पाने पर ईमानदारी की राह आसान हो जाती है। लेकिन अमीर बनने और दिखावे की स्पर्धा में कुछ लोग ठीक इसके विपरीत चलते हैं। यही हमें ध्यान देने की, खुद को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। ईमानदारी जीवन शैली है। इस जीवन शैली को अपनाकर हम अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए मिसाल बन सकते हैं।
1: मृदुल गुप्ता के वाचन स्वर में आपने सुना ईमानदारी विषय का लेख। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन, उत्तरा केलकर, उषा मंगेशकर और साथियों के गायन स्वर में। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात।
1: किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मशरूम उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय है जिसे बंद कमरे में भूसे या पराली पर उगाया जा सकता है। इसके लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 80 से 85 नमी, अंधेरे

पायदार स्थान और अच्छी स्वच्छता आवश्यक है। पैरा मशरूम छत्तीसगढ़ में पैराबुट्टू के नाम से भी जाना जाता है एवं गांव में क्रिस्को के खलिहान में पड़े धान की पुआल की ढेरी में वर्षा ऋतु में स्वतः उगते देखा जा सकता है। उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाकर पैरा मशरूम का अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है जिसमें शैया विधि उपयुक्त एवं प्रचलित है। पैरा मशरूम उत्पादन में शैया विधि इस प्रकार है। सबसे पहले धान की पुआल के 1/2 किलोग्राम वजन के बंडल बना लेते हैं। बंडल अधिक ढीले एवं ऐठे हुए नहीं होने चाहिए। इन बंडलों को साफ एवं ताजे पानी में 16 से 20 घंटे तक डुबोकर पानी निथार लेते हैं जिससे नमी 70 से 80% तक रह जाए। लगभग 100 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम चूने में 20 बंडल को भिगोया जा सकता है। एक शैया में कुल 17 बंडल होते हैं। 4 बंडल प्रति तह के हिसाब से आड़ा एवं खड़ा रखते हैं। शेष एक बंडल के पुआल को खोलकर

0: नमी 70 से 80 प्रतिशत तक रह जाए। लगभग 100 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम चूने में 20 बंडल को भिगोया जा सकता है। एक शैया में कुल 17 बंडल होते हैं। 4 बंडल प्रति तह के हिसाब से आड़ा एवं खड़ा रखते हैं। शेष एक बंडल के पुआल को खोलकर शैया के ऊपर ढक देते हैं। शैया जमीन से कम 1 फीट ऊपर होनी चाहिए। मशरूम बीज को 1.5% प्रति तह की दर से नीचे से 3 तह तक किनारे पर डालना चाहिए। 4th तह में पूरी शैया में बीज बिखेर कर ऊपर से थोड़ा सा बेसन भुरक दिया जाता है एवं शैया को पॉलीथीन सीट के द्वारा चारों तरफ से ढक देते हैं। इससे शैया का तापमान बढ़ेगा एवं आर्द्रता बनी रहेगी। शैया ढकने के 8 से 10 दिन के पश्चात मशरूम के पिनहेड समूह में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 2 से 4 दिनों में तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। पूरी फसल के समय 32 से 34 डिग्री तापमान एवं 85 से 90 प्रतिशत तक आर्द्रता होनी चाहिए। मशरूम की तुड़ाई अंडे वाली अवस्था में करना चाहिए। 5 से 7 दिन बाद दूसरी फिर तीसरी तुड़ाई की जाती है। इस तरह शैया में 3 तुड़ाई द्वारा लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक मशरूम प्राप्त किया जा सकता है। सफलता के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है। मशरूम उत्पादन क्षेत्र पूरी तरह कीटाणु रहित होना चाहिए। तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। मशरूम को बहुत कम रोशनी या अंधेरे की आवश्यकता होती है। 1 किलो मशरूम बीज से उगने वाले मशरूम की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन औसतन 1.5 से 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक उपज मिल सकती है। बीज की गुणवत्ता, बिजाई का तरीका, तापमान और आर्द्रता, इन सब चीजों का सही प्रबंधन मशरूम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मशरूम उत्पादन तकनीक ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन किसानों तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसके लिए खेतों की जरूरत नहीं होती। इसे घरों के अंदर उगाया जाता है और इसमें लागत कम तथा आर्थिक लाभ अधिक होता है। मशरूम में अति विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, जिसमें लाइसिन नामक अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज लवण, विटामिन बी, सी, डी एवं नियासिन एसिड और फॉलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मशरूम की व्यावसायिक खेती की विधि अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न तापमान की जरूरत होती है। अगर मशरूम 1 या 2 दिन भंडारण करना है तो पॉलीथीन में पैक की गई मशरूम को फ्रीजर में रखना आवश्यक होता है। साधारण तापमान में रखने से मशरूम जल्दी काले पड़ जाते हैं। डिब्बा बंद हेतु यंत्र अत्यधिक महंगे होते हैं और इसके लिए कई अन्य चीजों की आवश्यकता भी पड़ती है।
1: मशरूम उत्पादन पर आपने सुनी सामयिक जानकारी। आप सुन रहे थे कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भैया, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुन सकेंगे दिन के 10 बजे। NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय है शाम के 5 बजे।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि के 10:00। कार्यक्रम वन भवन आप सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर।

दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे समसामयिक बातचीत, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित आयनाक्रम, घर आंगन मेल और गीत संगीत।

शाम 7:21 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम हेलो किसानवाणी सजीव का प्रसारण समय है शाम के 7:30। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीकांत चंद्राकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा। चर्चा के मुख्य विषय हैं खरीफ सीजन 2026 की तैयारी और KCC किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधा, लाभ एवं उपयोगिता।

दोपहर 2:30 पर आप सुन पाएंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का प्रसारण समय है 6:20। कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है रात्रि 9:15।

0: श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अगले कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सा

0: सहमत्यम प्रकटितम।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग ह्लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्ना अस्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98% शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
2: I'm confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षा मंत्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमंत्री रक्षामंत्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः, कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
4: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत सादरी लोकगीत के साथ करते हैं। प्रस्तुत है PR भगत और साथियों के स्वर में ये डोमकच गीत।

मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सरगुजिया किसुन खेल गीत, गायक कलाकार परमेश्वरम राजवाड़े और साथियों के संयुक्त स्वर में।

लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे जंगल के आखिर में प्रस्तुत है सरगुजिया छोटे भुईहारी गीत। गायक कलाकार हैं रघुनाथ रामर साथी।

गायक कलाकार रघुनाथ राम और साथियों के स्वर में सरगुजिया छोटे भुईहारी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इब्राहिम अश की लिखी गज़ल भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में।

मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आप सुनते हैं अनुराधा पौंडवाल और चंदन दास की आवाज़ों में नक्श लयालपुरी का लिखा कलाम।

0: चंदन दास और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ों में नक्श लयालपुरी की लिखी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूँ राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो

चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म गाइड का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म गाइड का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
0: समाचार मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। उत्कर्ष योजना की प्रवेश परीक्षा स्थगित। कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए नई तिथि का इंतजार। 26 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा फिलहाल टली। शासन जल्द जारी करेगा संशोधित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा एवं आवंटित संस्थाओं के इम्पैनलमेंट कार्य में विलम्ब होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 26 जुलाई 2026 रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होगी। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को इस संबंध में सूचित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन जमा नहीं किया जाए। समाचारों के क्रम में और आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म आम्रपाली का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म आम्रपाली का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। अब समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। हरसागर तालाब स्थित गुमटियों के आवंटन हेतु 15 जून तक आमंत्रित किए गए ऑफर। नगर पालिक निगम आयुक्त ने बताया कि नगर पालिक निगम के स्वामित्व के हरसागर तालाब के पास स्थित भूतल पर बनी गुमटियों का आवंटन निर्धारित प्रीमियम जो कभी वापसी योग्य नहीं होगा तथा मासिक किराए पर किए जाने हेतु स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा 15 जून 2026 को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित प्रारूप में शील्ड ऑफर आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त ऑफर 15 जून 2026 को ही उपस्थित ऑफरदाताओं के समक्ष अपराह्न 4:30 तक खोले जाएंगे तथा 12 जून 2026 तक ऑफर प्रपत्र का निर्धारित शुल्क भुगतान उपरांत निगम के राजस्व कार्यालय गौरव पथ स्थित प्रशासनिक भवन के राजस्व शाखा से ऑफर प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑफर प्रपत्र के साथ निगम का कोई बकाया नहीं, प्रमाण पत्र एवं जमा अमानत राशि, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर के पक्ष में दिए हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं बिना अमानत राशि जमा किए गए तथा निर्धारित तिथि एवं समय अवधि समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रीमियम से कम प्रीमियम राशि का कोई भी ऑफर स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म सुजाता का गीत तलत महमूद की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा। समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। नगर पंचायत लखनपुर के सामुदायिक भवन में कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन 6 जून को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन 6 जून 2026 को नगर पंचायत लखनपुर के सामुदायिक भवन में किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों एवं कृषि समूहों को आधुनिक कृषि तकनीकों, ऋण एवं बैंकिंग सुविधाओं, सहकारी योजनाओं तथा कृषि आधारित उद्यमों के बारे में जानकारी एवं ऋण प्रदान करना है। कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य महिला समूहों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों में आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम में कृषि ऋण सुविधा एवं महिला समूह ऋण विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिले के कृषकों एवं महिला समूहों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ उठाने कहा है। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म श्री 420 का गीत। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का, आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की अगली खबर जनसंपर्क अंबिकापुर से। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सीतापुर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 15 जून तक आवेदन आमंत्रित। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI सीतापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 एवं 2026-28 में व्यवसाय कोपा, विद्युतकार, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जो 10वीं उत्तीर्ण हो एवं छत्तीसगढ़ के निवासी हों, प्रवेश हेतु 15 जून 2026 को रात्रि 11:00

59 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रखी गई है तथा आवेदक केवल वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म अनीता से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अनीता फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकारें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 8 बजने को हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया।

0: और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने

0: महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख

0: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में दो पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing

काम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में सम्मिलित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादन और प्रस्तुत करता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के पत्रिका में आप मन सुन सकत हो डॉक्टर सियाराम साहू ले वार्ता। विषय हवय छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु फुलवा। ये कहानी आप मन ला सुना ही डॉक्टर दीपशिखा पटेल और मोर भुइयां के आखिर में डॉक्टर मीता अग्रवाल आप मन ला कविता सुना ही। आज के अंक में सबले पहली आवा आप मन ला सुनवा थन एक वार्ता जेकर विषय हावे छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु। अब वार्ताकार हावे डॉक्टर सियाराम साहू।
1: हमर बाबा हा एक

जनौला जन्मावाए बता बारह में चार गए तब का बाँछी। जनौला तो सीधा और सरल है कि बारह में चार गए तब आठ बाँछी। तब हमर सियान है कहे अरे बेटा कुछ नहीं बाँचाए, बारह महीना में चार महीना चौमास में पानी नहीं गिरही तब वो आठ महीना कोनो काम के नहीं होए। ये महत्तम है छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु के, ये हमर लोक जीवन के प्राण आए। छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु सिर्फ मौसम भर नो है भलुक जिंदगी के उत्सव और जीवन चक्र के सबले महत्वपूर्ण अध्याय हरे। हम एला ऐसन घलो कही सकत हन वर्षा छत्तीसगढ़िया मन बर खेती के आरंभ और संस्कृति के पुनर्जन्म आए। हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, हमर ये पहचान है सर्वस वर्षा ऋतु ऊपर आधारित होते। वैसे तो किसानी के नवा साल है अक्ति के दिन ले शुरू होते, जी हाँ गाँव के ठाकुर देव माता देवाला या अन्य देवी देवता के पूजा पाठ करके बीज बोए के शुरुआत होते। फिर जेठ महीना के आखिरी अवसाढ़ के लगती माँ जब करिया बादर आगास माँ उमड़त घुमड़त गरजत चमकत आते तब असली खेती किसानी शुरू होते। आंधी के संग झिमिर झामर टिपिर टापर वर्षा होए लगते, तब किसान मेड़ पार मुही के जतन करत खातू कचरा ल बगरावत कांटा खूंटी ल सकेल थे और खेती के बूता मा लग जाते। तब उखर मधुर कंठ ले ए गीत निकल पर थे, कांटा खूंटी ल सकेलव रे लैका औ सियान बावत के दिन आगे भैया बोए ल चली धान। अषाढ़ के महीना में अर्तता के बोली ले नांगर जोतत किसान अपन पछीना ले धरती ल सींचते, तन के पछीना के बूंद झरते औ हृदय ले गीत के बोल। माटी के दुलरवा बेटा माटी के गीत गावत जब मेहनत करते तब पूरा वातावरण ददरिया के मोहक स्वर ले गूंजे लगते। आघु नगरिया बैला है टिकला डोली में उतरहूँ हो जाही चिखला हवा ले ले रे। अषाढ़ आते तब मन झूम जथे धान के बामा शुरू हो जथे, अषाढ़ के बूंद धरती बर अमृत तो आए संगे संग किसान बर घलो। अषाढ़ महीना मा चुक जबे माने जीवन के सुविधा ले चुक जबे, तेखर सिती कहे गे है डार के चूके बेंद्रा और अषाढ़ के चूके किसान। कृषि संस्कृति न केवल हमर लोक जीवन ला प्रभावित करते बल्किन कवि हृदय ला घलो। तभे तो किसानी के बूता ला अपन लेखनी में लिखते, चल धर तें झुहा टोपली मैं धरत हौ कुदारी संगवारी मैं धरत हौ रापा कुदारी, ठल्हा बैठे म जिंदगी नहीं चलाए बिन जांगर पेरे पेट नहीं भराए, कमा के खाबो नहीं करन अलाली संगवारी मैं धरत हौ रापा कुदारी। अषाढ़ महीना के नाहकत सावन आजत है, सावन सबला सुहात है, सावन महीना फसल के सिंगार करते तब मन मयूरा खुशी के गीत गाते। सावन महीना खेती के काम जोर होते, बन कचरा के निंदई के संगे संग बियासी के बूता घलो आ जाते। सावन महीना के घपटे बादर चमकत बिजली के संग किसान बियासी करत गीत के माध्यम ले अपन हृदय के उद्गार ला व्यक्त करते। ये सुघर बेरा मा छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी कवि कुंज बिहारी चौबे जी किसान के उद्गार ला लिखते, चल मोर भैया बियासी के नांगर अरे कैसे मजा बियासी के नांगर, बिजली लफा लफ चमकत है इंदर देवता तमकत है, जुड़ जुड़ बोहत है पुरवाही दिखत है लच्छन गजब पानियाही, घपटे है उत्ती डहर करिया बादर चल मोर भैया बियासी के नांगर। खेत के लहलहावत फसल ल देख के किसान के आनंद दुगना हो जाते, निंदई बियासी के संग धान चले के काम शुरू हो जाते। खेत में निंदत किसान श्रमिक के दल ददरिया गा के आनंद विभोर हो जाते। रिमझिम वर्षा सावन के ददरिया के स्वर लहरी आत्मा ला तृप्त कर देते। सावन महीना ले किसानी तिहार के शुरुआत हो जाते। हरेली छत्तीसगढ़ और कृषि संस्कृति के प्रमुख त्यौहार आए। हरेली सावन महीना के अमावस के दिन मनाए जाते। हरेली लोक जीवन और कृषि संस्कृति के मंगल के पर्व आए। तभे तो लोक कंठ ले किसानी काम के ऐसन उद्गार होते। पानी पसिया पेज पी के पहावत हन जिन गानी, मैं छत्तीसगढ़िया भैया करथौ खेती किसानी, जियत किसानी मरत किसानी नहीं जानौ कुछु सियानी। लैका मन गेणी बना के चढ़ते नाचते गाते और उछाह मनाते।

सावन महीना के अंजोरी पाख नवमी तिथि के भोजली बोए जाते जैन पुन्नी तक चलते। राखी तिहार के बिहान भर नदिया तरिया में ठंडा करे जाते। एमा आरती जागरण स्वागत और विसर्जन के गीत गाए जाते जैन मा भोजली दाई के स्तुति होते। देवी गंगा लहर तुरंग हमर भोजली दाई के भीजे आठो अंग। यही भादो महीना में चतुर्थी तिथि के बहुला चौथ मनाए जाते। ओखर दो दिन बाद भादो महीना अंधियारी पाक के छठ तिथि के माता मन अपन संतान के सुख समृद्धि बर कमर छठ के उपास रही थे। एला भगवान बलराम के जन्मदिन घलो माने जाते। कमर छठ के दो दिन बाद आते आठे कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पूरा गांव उछाह मंगल ले मनाते। दूसर दिन दही लूट के आयोजन होते जेमा गांव के ग्वाल बाल मन मगन होके ये परब ला सुघर बना देते। दही लूटो नंदलाल दही लूटो नंदलाल आठे कन्हैया दही लूटो। पोरा तिहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिहार आए। पोरा तिहार भादो अमावस के मनाए जाते। पोरा पोर फूटना यानी धान में पोटरी पान आना। पोरा के दिन कृषि संस्कृति के आधार नंदिया बैला के पूजा करे जाते। नंदिया बैला में ठेठरी खुरमी चढ़ाए जाते जेन हर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक आए। ये लोक आस्था के चरम हरे। जी हाँ खान पान और रोटी पीठा में घलो देवत्व के दर्शन होते। नान्हे लैका मन नंदिया बैला के पूजा के बाद ओमा सिली लगा के खेलते दौड़ाते और आनंदित होते। नोनी मन जाता पोरा दिया चुकिया और माटी ले बने खिलौना ले सगा पहुना खेलते। महिला मन पोरा पटके बर जाते जिहां सुवा नित्य करत अपन अंतस के भाव ला व्यक्त करते। तरिहरी नाना मोर नाना हरे नाना कदम तरी मोंगरा के झाड़े ये झाड़े रे सुवना कदम तरी मोंगरा के झाड़े। पोरा के तीन दिन बाद तीजा तिहार। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में तीजा तिहार के बड़ महत्तम है। भादो महीना के अंजोरी पाक के तीसर दिन तीजा के तिहार मनाए जाते। पोरा तिहार के रोटी धर के भैया के अगोरा रही थे। माता बहनी मन चाहे कोनो उम्र के होए मैके के दुलार पाए बर कुलकत रही थे। और रही काबर नहीं साल भर में एक बेर तो ये पावन अवसर आते। करु भात खा के तिजहारी मन उपास रही थे। पति के सुख समृद्धि और दीर्घायु जीवन बर कठिन निर्जला उपास रही थे। ये उपास ला कुमारी कन्या मन घलो रही थे। माता पार्वती हर मनचाहा बर पाए बर भगवान शिव के कठिन तपस्या करे रहीस ऐसे वेद पुराण में वर्णन और लोक मान्यता है। तीजा के बिहान भर गणेश चतुर्थी ले शुरू हो जाते विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना 11 दिन चलते। गणेश विसर्जन के बाद शुरू हो जाते पितर पाक। पितर पाक में हम अपन पुरखा मन के सुरता करत उखर प्रति अपन कृतज्ञता व्यक्त करथन। तोरई के साग संग बरा सोहारी और खीर के भोग लगावत पुरखा मन ला अर्पण तर्पण देथन। ए बीच खेती में आखिरी निंदई करगा छटई के काम और फसल ला खातू माटी के बरोबर मात्रा देवत पानी आदि के बने देखभाल करे बर लगते। पितर मोक्ष के संगे संग देवी दुर्गा के आराधना के पर्व कुमार नवरात्रि के पर्व शुरू हो जाते। देवी दुर्गा के भक्तिमय वातावरण ले गांव गूंजे लग जाते। माता देवाला में जमारा बुआ थे मनोकामना के ज्योति जल थे। देवी के मूर्ति की स्थापना होते और अपन मनवती मनाते। माता की स्थापना के सुमरनी सिंगार लेके विसर्जन तक अलग अलग प्रकार के गीत गा के माता के सेवा करे जाते। माता और जमारा विसर्जन के बाद दशहरा के पर्व मनाए जाते। ओखर 5 दिन बाद शरद पूर्णिमा मनाए जाते। फिर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाते। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु सिर्फ पानी नहीं लावाए यहाँ के लोक जीवन के खान पान रहन सहन सबों में परिवर्तन लाते। किसान मन बर ये चौमास आशा और संस्कृति के उत्सव होते। वर्षा ऋतु छत्तीसगढ़िया लोक जीवन बर ऋतु भर नो है। ये श्रम संगीत स्वाद और संबंध के मौसम आए। खेती में पानी भरत ही छत्तीसगढ़ के लोक जीवन आशा और विश्वास ले भर जते।
ए सबो बात ला जान

0: ने के बाद हमर बाबा के बात ह सिरतोन लगथे कि 12 महीना में 4 महीना गीस त का बचीस।
1: डॉक्टर सियाराम साहू ले अभी आप मन वार्ता सुनत रहो जेकर विषय रहिस छत्तीसगढ़िया लोक जीवन मा बरखा ऋतु। अब कार्यक्रम में आगू बढ़त हवन और आप मन ला एक कहानी सुनवात हन जेकर शीर्षक हावे फुलवा। अब कहानी सुनात हैं डॉक्टर दीपशिखा पटेल।
2: गजब दिन के गोट है, एक गांव है जंगल के तीर में रहिस। गांव में सब हंसी खुशी के साथ जीवन बितावत रहे। गांव में ककरो घर में सुख दुख आवे तो गांव में सबो जन मिल के निपटारा करे। गांव के तीर में किम रिकिम के रूख राई, आमा, जाम, तेंदू, महुआ, बिही, केरा, अमली, आनी बानी के रूख रहिस। गजब सुघर लगे संझा बिहनिया, चिरई चिरगुन के मीठ बोली। उही गांव में डोकरा डोकरी रहे, तेखर दू जन बेटा और एक जन बेटी रहे। बेटा मन के बिहाव हो गए है, नोनी के बर बिहाव नहीं हुए है। नोनी अपन दाई ददा के संग में रहे। डोकरा डोकरी मन अपन बेटी के फुलवा नाम रखे रहिन। सही में फुलवा हा फूल असन सुघर रहे। रोज बिहनिया उठ के अपन दाई के संग में रन्नी कुरिया में जाके घर लिप के पानी भर के खेत चल देवे। भाई भौजी मन फुलवा के काम देख के ईर्षा करे। फुलवा अपन दाई ददा संग खेत में जावे और चिरे चिरगुन ला देख के गजब कुलक कुलक के खेले। इसने इसने में फुलवा चिरे चिरगुन के भाका ला समझे लगे। ए डहर ओखर भाई भौजी मन फुलवा ला गजब ठिटोली लगा के ताना मारे। फुलवाला देखे तहां ओखर भाई भौजी मन उला दुरिया ले चिल्लावे, वही दे आवते करिया चिरई कहके। फुलवा रोवत अपन दाई के गोदी में बैठ जावे। इसने दिन बीतत जाते। अब डोकरा डोकरी के बेटा बहु मन अलग खाए कमायला धरलिन। फुलवा अपन सियान दाई ददा के संग रहे गए। फुलवा के भाई भौजी मन जंगल में रोज डाही मारे बर जावे। फुलवा घलो अपन सियान दाई ददा संग में डाही मारे बर जावे तो ओखर भाई भौजी मन फुलवा ल देख के और ताना मार के हंसे। फुलवा चुपचाप काम करत रहे और अपन भाई भौजी ले पहले काम खत्म करके आमा के रूप में चढ़ के अपन सियान दाई ददा और भाई भौजी मन बर पके पके आमा ला भुइया में गिरावे। फिर वाह रे निर्दयी भाई भौजी रूख ले उतार के ओखर भाई मन चटकन में मार देवे। बिचारी फुलवा रोवत सुस्कत अपन दाई के लुगरा के छोर में आँखी के आंसू पोछत अपन दाई ला पोटार लेवे। ए डहर ओखर भाई मन नागर जोते और डाही मारे रहे तउन खेत में धान बोए है। बिचारी फुलवा का करे, रात के अपन सियान दाई ददा मन ला खवा पिया के सोवा दिस और जंगल निकल गए। फुलवा तो पिंगला विद्या जानते रहे, चिरे चिरगुन और सब जीव जानवर के बोली भाखा जाने समझे। फुलवा जम्मो जंगल के सिंग वाले बरहा मल्ला गुहार लगाते। रात भर में बरहा मन फुलवा के खेत ला सिंग में कोट डरते। फुलवा अपन घर में चुपचाप आके सो जाते। इति बिहनिया ले उखर भाई मन नागर धर के जोते पर जावे ता देखते खेत के जुताई हो गए है। फुलवा के भौजी मन आँखें मटकावत ईर्षा के मारे कहते, तोरे करिया चिरई बहनी के खेत ताए बिकट कमैलिन बने हैं। फुलवा रात के बियारी करे के बाद अपन दाई ला कहते, दाई जान अब भाई मन करा ले खेत में बोए बर धान मांग के लान लेते। फुलवा के बात मान के दाई हर अपन बेटा मन जगह जाके कहते, बेटा हो खेत में फुलवा हा घलो धान बोही धान दे देते हो। भाई मन आखी तरेरत कहते, दाई तोला चिटको लाज नहीं आवे, अब फुलवा टूरिया धान बोही हमर गांव में नाक कटवाओ। भौजी मन घलो अपन सास ला नंगत फुहरे फुहर गारी देते। दाई बिचारी कले चुप आगे। फुलवा अपन दाई के डबडबाए आखीला देख के जान डरिस। फुलवा कहते, दाई पुजारी बाबा घर जाके कुटकी मांग के लाबे। फुलवा के दाई ददा दोनों जन पुजारी घर जाके कुटकी मांग के लाते। फुलवा कुटकेला धर के खेत में जाके हुम दे के जंगल के जम्मो देवता धामी मन के सुमरन करत कहते, हे मोर पुरखा के देवता हो कुटकी बोवत हो सब जन मोर रक्षा करहु। कुछ दिन बीते के बाद फुलवा के खेत में कुटकी रगबग ले जाम गे। फुलवा के भाई के खेत में धान में सावा

दौरी उपज गई। धान के एक बोझा नहीं होइस, फुलवा के गाड़ा भर भर कुटकी होए हैं। फुलवा जम्मो अनाज ला अपन घर के कोठी में भरवा देस। एक दिन रात के बेरा माँ फुलवा के भाई मन ईर्ष्या के मारे फुलवा के घर में आगे लगा दिन। फुलवा के घर और कोठी में रखे कुटकी भुंजा के राख हो गए। फुलवा अपन सियान दाई दादा के कैसनों करके जीव बचाते। फुलवा गजब चेतलक बेटी हरे, घर के राख जुड़ाते। तब जम्मू राख ला बोरा में भर के भैंसा गाड़ी

0: फुलवा की गाड़ी ला देख के व्यापारी कहते, नोनी मोर सियान दाई ला तुर गाड़ी में बैठा लेते, रेंगत रेंगत थक गए है। फुलवा कहते, मोर गाड़ी में सोना चांदी भरे है, कोनो मनखे के पाँव पर जही तब सब राख हो जही। व्यापारी कहते, तुर गाड़ी भराए सोना चांदी कहूँ राख हो जही तो बदला में सोना चांदी और ये गाय बछरू ला दे देहूँ, मोर दाई ले बढ़ के कोनो चीज नो है। व्यापारी के दाई ला फुलवा अपन गाड़ी में बैठा लेते। व्यापारी के गांव में पहुँच के ओकर दाई ला घर में उतार के फुलवा अपन गाड़ी में भराए बोरा ला देख के कहते, एकरे सेती कह रहे हो नहीं बैठा रहूँ, देख जम्मो सोना चांदी हा राख हो गए। व्यापारी देखते सिरतुन गाड़ी के बोरा में राख भराए है, का करे बेचारा, अपन बात में हार गे रही से, जैसे कह रही से वैसने सोना चांदी और दुधारू गाय बछरूला दे दिस। फुलवा गाड़ी में सोना चांदी और गाय बछरूला धर के घर आ गए। फुलवा के भाई भौजी मन देख के अचरिच में पड़ गए। ओखर भाई आके पूछते, कस नोनी गाड़ी में राख भर के लेगे रहे और कैसे सोना चांदी गाय बछरू धर के लाए हस। फुलवा हा अपन बड़े भाई ला नोनी कह के पूछत सुनिस त भाई के अंतस के कपट ला समझ गए। फुलवा कहते, राख बेच के लाए हूँ, जाके बड़े भाई घर माँ बताते। लालच में आके दोनों भाई मन रात के अपनों घर में आगी लगा देते। घर कुरिया धान कोदो सब भुंजा गए। बिहनिया ले उठ के घर भुंजाए है तेखर राख ला सकेल। फुलवा के भाई भौजी मन बोरा में भर के गाड़ी में लाद के शहर शहर घूमे। राख ले लो हो राख ले लो, फिर सांझ के होत ले कोई राख नहीं लेन, का करे थके हरे थोतना उतारे गांव पहुँचिन। घर द्वार तो आगे में भुंजा गेरा है, भाई भौजी के सब गर्व टूट जाते। मुड़ी ला धरे दोनों भाई रोवत बैठे रहा है। उतके बेरा पाछू डहाल ले उखर दाई ददा मन अपन बेटा मन के पीठ में हाथ रखते। फुलवा घलो अपन दाई के लुगरा के छोर ला धर के खड़े रहते। ओखर भाई मन मुड़ी उठा के देखते और घोक पार के रो डरते। भाई भौजी मन फुलवा ला बाँह भर पुटार के कहते, हमला छिमा कर दे नोनी, ते हमर घर हमर गांव की देवी असनोनी, हमन तोला बेटी समझ के तोर इज्जत नहीं कर सकें, ते हमर बेटी नो अस बेटा अवस, हमर आँखी उघर गे। फुलवा ला बाँह भर पुटारत देख के डोकरा डोकरी मन के आँखी ले आंसू बोहावत है। अपन लेका मल्ला एक होवत देख फुलवा के दाई कहते, जैसे मोर लेका मन एक हो गए वैसने जम्मो के घर में खुशहाली रहे, सब जुर मिल के रहे और बेटी बेटा में कोनो भेद मत रखे। नार भात चुर गए मोर कहानी पुर गए।
1: फुलवा ये कहानी अभी आप मन सुनत रहे हो डॉक्टर दीपशिखा पटेल ले। और कार्यक्रम के आखिर में अब आप मन ल सुनवात हन एक छत्तीसगढ़ी कविता पाठ सुनात हमें डॉक्टर मिता अग्रवाल।
2: मोर कविता के जो शीर्षक है वो है नदिया कस जिंदगी धारा। रावी सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र सात

करत भुइया तन लासी च जिंदगी के आधारा हे। कल कल छल छल बही थे नदिया, कल कल छल

अभी गर्मी बहुत तपत है, तो हम मनखे मन के तो हाल बेहाल है। नदिया तरिया तको जौन प्रकृति के उपादान है, ओकर एक चित्र खींचे के प्रयास करत हूँ। पानी की किल्लत बहुत होवत है, तो पानी जीवन जगत हवे जी, पानी जीवन जगत हवे जी, एकर कर मोल अ बूंद बूंद पानी ला जतनौ, जीव द्वार खोल जल्हा बाचे जिंदगी बाचे, जल्हा बाचे जिंदगी बाचे, बाचे सरी साज, और चेत लगा के संकट टालो बूंद बनाए काज। पंच तत्व मा एक हरे जल, पंच तत्व मा एक हरे जल, बड़का दाम मान सागर नदिया झरना तरिया, सागर नदिया झरना तरिया, कतको रूप जान सब गुलना अपना लेते जी, सब गुलना अपना लेती जी, रंग अपन मिटाए अब बर्फ भाप बन उड़ जावे जी, धुंगिया रूप भाए धुंगिया रूप भाए, पानी बिन सब सून होए जी, पानी बिन सब सून होए जी, सबले बड़े शाप और नीर पवन हाँ बदे मितानी, संगवारी माप संगवारी माप, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बचे सासा जान और जिंदगी दाता प्राण विधाता, जीव जिंदगी मान जीव जिंदगी मान, पानी जिंदगी जगत हवे जी, एकर कर मोल अब बूंद बूंद पानी ला जतनो, जीव द्वार खोल जीव द्वार खोल। मोर अगला रचना जौन है वो नारी सिंगार ऊपर है, हमारे छत्तीसगढ़ के। सांवर गोरी रंग पाए है छत्ती

0: अभी आप मन डॉक्टर मीता अग्रवाल ले कविता पाठ सुनत रहो और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले इहे विदा देवा। जय जोहार महेंद्र साहू कोती ले।
1: अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया। संपादन और प्रस्तुतकर्ता महेंद्र साहू थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
2: आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी भाषा में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9 बजे हैं। पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार दोस्तों, गुंजन के आज के अंक में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव, और आज हम सुरों के धागे में ऐसे विषयों को पिरोने जा रहे हैं जो हमारे आज और कल से सीधे जुड़े हैं। जब देश अपने पैरों पर खड़ा होता है तो एक नई धुन जन्म लेती है। जब हम तकनीक की दुनिया में सुरक्षित कदम बढ़ाते हैं तो सुखद राग गूंजता है, और जब मौसम की तपिश हमें चुनौती देती है तो सजगता का गीत हमें राह दिखाता है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि 140 करोड़ धड़कनों का सामूहिक संकल्प है। ये अपनी जड़ों की ओर लौटने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का वो उत्सव है जहां देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। लोकल को वोकल बनाने की ये गूंज आज हमारे कुटीर उद्योगों से लेकर स्पेस टेक स्टार्टअप्स तक सुनाई दे रही है। जब हम अपनी मिट्टी के महक और अपने हुनर पर भरोसा करते हैं तो प्रगति का एक ऐसा ताना बाना बुना जाता है जो हमें वैश्विक मंच पर बहुत आगे पहुंचा देता है। बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में गीत लिखा संतोष आनंद ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: प्यासा सावन, फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता साथियों, अतीत की निर्भरता को पीछे छोड़कर आज हमारा देश रक्षा उपकरणों से लेकर मोबाइल फोन तक खुद बना रहा है। मेड इन इंडिया का ठप्पा आज दुनिया भर में गुणवत्ता और भरोसे का पर्याय बन चुका है। ये हमारी कला, विज्ञान और उद्यमशीलता का एक ऐसा फ्यूज़न है जो देश के कोने कोने में विकास का एक नया संगीत बिखेर रहा है। आत्मनिर्भरता का असली मतलब अलगाव नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। जब भारत का किसान, वैज्ञानिक और छोटा व्यापारी सशक्त होता है तो पूरे देश की नींव मजबूत होती है। ये आत्मनिर्भरता हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा सुरक्षित कल तैयार करती है जहां हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, बल्कि दुनिया को राह दिखाने वाले मार्गदर्शक के रूप में खड़े होते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उससे पहले सुनते हैं फिल्म आशा का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म आशा का गीत। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।

0: या 230 600।
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
0: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230 600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत केवल एक अभियान नहीं बल्कि देश को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का संकल्प है। इसका उद्देश्य भारत को उत्पादन, नवाचार और कौशल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर वैश्विक स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। जब देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और अपने कौशल का विकास करने में योगदान देता है, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। ये पहल न केवल रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उससे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन, फिल्म है वो सात दिन।

0: वो सात दिन। फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
1: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: दोस्तों, जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है, हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान और तेज़ हो गई है। एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफ़र, एक क्लिक पर पढ़ाई और मनोरंजन। लेकिन इस चमकती हुई डिजिटल दुनिया के पीछे साइबर अपराधियों का एक अंधकार में जाल भी बुना जा रहा है।

हमारी ज़रा सी लापरवाही जैसे एक अनजान लिंक पर क्लिक करना या अपना OTP साझा कर देना हमें एक बड़े संकट में डाल सकता है। इसीलिए इस आभासी दुनिया में सजगता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। डिजिटल इंडिया के सफ़र में हमें कदम तो आगे बढ़ाने हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। साइबर सुरक्षा का मतलब तकनीक से डरना नहीं, बल्कि तकनीक को तमीज़ और सूझबूझ से इस्तेमाल करना है। मजबूत पासवर्ड बनाना, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना और अपनी निजी जानकारियां सोशल मीडिया पर सरेआम न करना, यही वो डिजिटल ढाल हैं जो हमें इस अदृश्य युद्ध में सुरक्षित रखती हैं। कार्यक्रम गुंजन का अगला गीत हमने लिया है फिल्म पुलिस पब्लिक से, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीत असद भोपाली का, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन बातों और गीतों का कार्यक्रम। श्रोता साथियों, साइबर सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का डिजिटल कर्तव्य है। जब तक हम खुद साइबर साक्षर नहीं होंगे, तब तक हम एक सुरक्षित डिजिटल समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हम घर से निकलते वक्त ताला लगाते हैं, वैसे ही अपनी डिजिटल पहचान पर भी सुरक्षा का ताला लगाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, डिजिटल तरक्की का असली मज़ा तभी है जब हमारा डेटा और हमारा सम्मान दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित हों। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हेना से, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM पर ये आकाशवाणी।

मणि अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन बातों और गीतों का कार्यक्रम। साथियों, अब हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर का, जिनकी पुण्यतिथि हमें उनके अद्वितीय योगदान को याद करने का अवसर देती है। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से आम आदमी के सपनों, संघर्षों और भावनाओं को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। फिल्म आवारा, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों ने उन्हें देश ही नहीं दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। उनकी फिल्मों के गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में, शैलेंद्र की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन, फिल्म है राज कपूर अभिनीत फिल्म मेरा नाम जोकर।

श्रोता साथियों, जब भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय खोले जाएंगे, राज कपूर का नाम बड़े ही सम्मान और आत्मीयता से लिया जाएगा। उनकी मुस्कान में अपनापन था, उनकी अदाकारी में जीवन की सच्चाई थी और उनकी फिल्मों में आम इंसान के सपनों की धड़कन सुनाई देती थी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पर्दे पर निभाए गए उनके किरदार, उनकी संवेदनशील दृष्टि और उनके अमर गीत हर पीढ़ी के दिलों में जीवित हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना केवल एक कलाकार को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस अमूल्य विरासत को नमन करना है जिसने हमें हंसना, रोना, सपने देखना और जीवन से प्रेम करना सिखाया। कार्यक्रम का अगला गीत राज कपूर अभिनीत फिल्म संगम से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

बीच नहीं है, लेकिन पर्दे पर निभाए गए उनके किरदार, उनकी संवेदनशील दृष्टि और उनके अमर गीत हर पीढ़ी के दिलों में जीवित हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना केवल एक कलाकार को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस अमूल्य विरासत को नमन करना है जिसने हमें हंसना, रोना, सपने देखना और जीवन से प्रेम करना सिखाया। कार्यक्रम का अगला गीत राज कपूर अभिनीत फिल्म संगम से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम। साथियों, कार्यक्रम में अब बात मौसम के उस मिजाज की जो इन दिनों हमें सीधी चुनौती दे रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव यानी लू के थपेड़े सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वो घंटी हैं जो हमें सचेत कर रही हैं। क्रॉन्किट के जंगलों और कटते पेड़ों के बीच सूरज की तपिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। इस भीषण गर्मी में खुद को बचाना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। दोपहर की कड़क धूप में बेवजह निकलने से बचना, शरीर में पानी की कमी न होने देना और सूती व हल्के कपड़ों का चुनाव करना ही हीट वेव में सबसे बेहतरीन इलाज है। इसके साथ ही अपने घर की छतों या बालकनी में बेजुबान पक्षियों और आवारा जानवरों के लिए पानी रखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तपिश का शिकार वो भी हैं। साथियों, आज गुंजन के इस मंच पर हमने आत्मनिर्भरता के गौरव को महसूस किया, डिजिटल दुनिया की सुरक्षा के गुर सीखे और तपते मौसम में सजग रहने का मंत्र भी जाना। गुंजन की यात्रा यहीं तक। स्वीकारे राजीव का नमस्कार।

आप सुन रहे थे गुंजन बातों और गीतों का कार्यक्रम। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर के और सरायपाली केंद्र है। प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना, इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र में अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल पर ही कराई गई, जिसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य

जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के गारपा और कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा पहुंचे। गारपा में आयोजित जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा तथा सुरक्षा से जुड़े कई विकास कार्यों की घोषणा की। वहीं बड़े कनेरा में आयोजित समाधान शिविर में उन्होंने कोंडागांव जिले के लिए 152 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सुकमा में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की 10 पैक्स समितियों में यह सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन तकनीक से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय और कम लागत में किया जा सकेगा। इससे किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर के पास सारंग में स्थित मिवान स्टील प्लांट में ब्रायलर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10 बजे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: भारत में सूचना क्रांति अपने सर्वोच्च शिखर पर है। जन संचार के माध्यम हो या सोशल नेटवर्क की दुनिया, जनमानस को अत्यंत प्रभावित किया है आधुनिक सूचना तंत्र ने। विज्ञान के नित नए आविष्कारों ने न सिर्फ समाज को विकसित किया है बल्कि सामाजिक विघटन को दूर करने में भी मदद की है। पहले कितने ही ऐसे क्षेत्र थे जहां संचार व्यवस्था की बहाली दुष्कर मानी जाती थी, खास तौर पर प्राकृतिक आपदाओं और आतंकी घटनाओं के वक्त त्वरित सहायता और बचाव कार्य की गति बहुत धीमी होती थी। लेकिन अब ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक डायल 112 के आ जाने से, यानी एक के नंबर सबोबर, और वो है नेक्स्ट जेन 112। इस आपात सेवा का विस्तार कर सुरक्षा व्यवस्था को अब और भी दमदार बना दिया गया है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने डायल 112 के प्रतिक्रिया समय और समस्या समाधान को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही है।
1: तो पहले खाली 16 जिला में था ये सेवा डायल 112, लेकिन अभी पूरे 33 जिला में ये सेवा हम लोग उपलब्ध करा दी है। पूरे 33 के 33 जिला में जितना ज्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकती है वो हम सब लोग

0: सरकार की मंशा अब सभी 33 जिलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डायल 112 आपात सेवा लागू करने की है। इसके लिए 400 नए आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन तैनात किए गए हैं। ये सभी वाहन अति आधुनिक संचार उपकरणों से लैस है। डायल 112 के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा,
1: माननीय गृहमंत्री जी की उपस्थिति, मुख्यमंत्री जी, विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहे और गृहमंत्री जी पुरेंद्र जी, हमारे क्षेत्र के विधायक और अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें 112 और 112 नंबर पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक स्थानों पे एक दिन में आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, मोबाइल फोरेंसिक वैन, जो अपराध होते हैं और अपराध के साक्ष्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं, और ये वैन सभी जिलों में 32 दिया जा रहा है। ये वहां पे फोरेंसिक जो एविडेंस होते हैं, जैसे हाथ के निशान हैं, कपड़े के निशान हैं, उनके ब्लड के सैंपल है, जो एक घंटे के बाद भीड़ आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये एक एविडेंस इसी का कोर्ट में चलता है।

0: और राहत की समय सीमा भी घट गई है। गंभीर अपराध, चोरी, दुर्घटना, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध की स्थिति में डायल 112 एक विश्वसनीय कॉल नंबर है।
1: मैं राजेश भागड़े, उप पुलिस अधीक्षक बालोद से बोल रहा हूँ। डायल 112 यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने जगदलपुर मार्केट का उद्घाटन किया था। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कई जिलों में इसका उद्घाटन 112 का जो संचालन है वो नहीं हो रहा था, किंतु 19 तारीख को उन्होंने विधिवत उद्घाटन करके उसका शुभारंभ किया, जिसके तहत बालोद जिले में भी 112 का वो शुभारंभ हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि भारत में डायल 112 एक एकीकृत आपातकालीन सेवा नंबर है, जिसे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह सेवा पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को एक ही नंबर पर उपलब्ध कराती है। डायल 112 की मुख्य विशेषताएं लगभग किसी भी आप मोबाइल या लैंडलाइन या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। SMS के द्वारा भी आप उसको सूचित कर सकते हैं। यह सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है, जो मुख्यतः महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु उपयोगी होती है। आपात स्थिति में लोकेशन ट्रैकिंग और त्वरित सहायता की सुविधा भी डायल 112 के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई राज्यों में मोबाइल ऐप और अन्य फीचर्स के माध्यम में भी यह सुविधा उपलब्ध है, जो आने वाले दिनों में जिले में भी लागू किया जाएगा। और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकते हैं ये मैं बताना चाहूंगा। अपराध या कोई चोरी की सूचना हो, कोई सड़क दुर्घटना हो, आग लगना हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, महिला सुरक्षा संबंधी कोई सहायता चाहिए या किसी भी प्रकार की तत्काल सहायता चाहिए, तो डायल 112 तत्काल वो सेवा में हाजिर रहेगा। शहरों में ये जो जो इनका जो करने का टाइमिंग 10 मिनट का रहता है, किंतु देहात में आधा घंटे का टाइम उसको फाइनल किया गया है कि जब भी आप 112 को फोन करेंगे तत्काल आधे घंटे के अंदर सेवा आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। और डायल 112 का उद्देश्य अलग अलग आपातकालीन नंबरों को एक साथ, जैसे 100 नंबर है, 101 नंबर है, 108 आदि को एकीकृत कर नागरिकों को तेज और सरल सहायता उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है डायल 112 का।

छत्तीसगढ़ में पहले से कार्यरत डायल 112 दरअसल भारत का एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह के संकट की स्थिति में चाहे पुलिस की जरूरत हो, एम्बुलेंस की या फायर ब्रिगेड की, ये सेवा सातों दिन 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध रहती है। अब उच्चतम तकनीक के विकास के कारण इसके कार्य क्षेत्र का दायरा भी बढ़ गया है।

छत्तीसगढ़ में डायल 112 केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर है। भारत सरकार के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के ढांचे के तहत डायल 112 के अंतर्गत कई सेवाओं को एकीकृत किया गया है, जिनमें पुलिस आपातकालीन सेवा, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, राष्ट्रीय साइबर अपराध

0: हेल्पलाइन, रेल हेल्पलाइन और बाल हेल्पलाइन शामिल है। इस पहल से अपराध कम करने में मदद मिल रही है। डायल 112 अपनी मुख्य तकनीकी संरचना और प्राथमिक प्रतिक्रिया वाहनों के माध्यम से संवेदनशील समूहों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता ने बताया,
1: जहां पर ऐसी जनसंख्या है जहां पर हमारा डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जा सकती है और वहां पर कॉलर को सुविधा ज्यादा है अपनी खुद की भाषा में बात करने के लिए, तो ऐसे में वो अपनी खुद की भाषा में भी शिकायत और सहायता मांग सकता है और हमारा प्रयास रहेगा कि उस भाषा को समझने वाला व्यक्ति उससे वार्तालाप करे और उसकी पूरी बात समझ के तदनुसार हम वहां पर उसको सहायता पहुंचाएं। डायल 112 की जो सुविधा है पूरे देश में और वैसे ही छत्तीसगढ़ में है, वो सुविधा जो है वो उसमें लोकेशन बेस्ड सर्विस आती है, तो लोकेशन बेस्ड सर्विस में जो कॉलर है वो उस कॉलर की लोकेशन अपने आप जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 112 को उपलब्ध करा देते हैं, तो इनके लोकेशन के आने से हम बड़े आसानी से तय कर सकते हैं कि जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको कहाँ पहुंचना है और उस लोकेशन को फर्दर रिफाइन करने के लिए उनसे हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में पुलिस पर्सनल है वो फर्दर उनसे बात कर लेते हैं। 112 केवल पुलिस की अकेली सेवा नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सेवा है, तो किसी को भी अगर पुलिस, मेडिकल या फायर के कोई आपदा में एक रिस्पांस चाहिए तो वो 112 डायल करके हमारे कमांड सेंटर तक पहुंच सकता है। कमांड सेंटर पे उसकी पूरी बात नोट की जाएगी और पुलिस का अगर सेवा चाहिए तो हम उसको खुद डिस्पैच कर देंगे, अगर उसको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो हम उसके इवेंट को तत्काल जो 108 का कमांड सेंटर है उनको अग्रेषित करते हैं जिससे वो लोग एम्बुलेंस भेजते हैं, और अगर कोई फायर का इंसिडेंट है तो हम उसको फायर सर्विसेज को तुरंत नोटिफाई कराते हैं तो वो लोग आते हैं। इसके अलावा और भी वेमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन की भी जरूरत अगर परिलक्षित होती है तो उन हेल्पलाइंस में बैठे हुए जो कमांड सेंटर के पर्सनल हैं उनको भी ये सूचना दी जाती है तुरंत, चाहे रेल मदद की हो, वेमेन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, आपदा प्रबंधन हो, तो ये सब का इंटीग्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि अगर उसको मल्टीपल कॉल्स नहीं करने पड़ेंगे हर चीज के लिए। आने वाले दिनों में डायल 112 की सेवा यूनिवर्सल हो जाए ये उद्देश्य रहेगा और जैसे जैसे हमारे वनाच्छादित क्षेत्र जो हैं उनमें विकास पहुंचेगा, उनमें से जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, हम चाहेंगे कि डायल 112 वहां पर और ज्यादा विस्तार में जाए। साथ ही साथ इसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, तो उस रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए हम जितने अधिकाधिक पर्सनल को इसमें लगाना चाहेंगे और अधिकाधिक इसमें इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स इसमें डिप्लॉय करना चाहेंगे, तो ये सब संसाधन से जुड़ी बातें हैं और भविष्य में हम लोग इन सब में बढ़त करना चाहेंगे क्योंकि हमारा जो आईटी सॉल्यूशन है वो लगभग परिपूर्ण है, तो अब जो उसमें इम्प्रूवमेंट मिलना है वो इन संसाधनों के अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट से मिलेगा। डायल 112 की जो सेवा है उसका उपयोग करें, कहीं पर भी आपको यदि स्वयं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है या आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा नागरिक संकटापन्न है तो आप 112 को जरूर कॉल करें और उसको संपूर्ण जानकारी दें। यदि आप लोकेशन को जितना ज्यादा बारीकी से प्रिसाइज और एक्यूरेट बताएंगे हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को वहां जल्द से जल्द पहुंचने में उतनी सुविधा मिलेगी, तो ये सेवा पूरी तरह से जनता के लिए है, तो जनता को इसको एक तरह से अपना एसेट मान के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।

एक नंबर सबोबर। तत्काल सहायता के लिए ये नारा अब छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। गांव हो या शहर, एक नंबर यानी डायल 112 अब उपलब्ध है सबोबर यानी सबके लिए, सभी जगह और वो भी 24 घंटे। डायल 112 की कार्यप्रणाली जन अपेक्षाओं के अनुरूप है, तभी तो इसके प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है।

0: लोग खुश हैं अपनी समस्या का समाधान तत्काल पाकर। ऐसे कई मामले रोजमर्रा पेश आते हैं जिनमें जरूरत होती है तुरंत सहायता की, और वहां अगर आसानी से मदद मिल जाए तो फिर ऐसे में जनता जनार्दन के चेहरे आखिर क्यों न खिले। आप हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अनिल सोनी।
1: पूरे छत्तीसगढ़ में फेज टू नेक्स्ट जेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में डायल 112 जो कि एक एकीकृत इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है उसका संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत रायगढ़ जिले में 16 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल प्रदाय किए गए हैं जो कि 24/7 सेवा सुनिश्चित कर संचालित हो रही है, और 24/7 सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें पुलिस, फायर, मेडिकल इमरजेंसी, इसके साथ साथ महिला चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, आपदा सहायता और हाईवे इमरजेंसी जैसी सेवाओं को एक ही नंबर 112 से जोड़ा गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो इमरजेंसी में हो, पुलिस से संबंधित या फायर से संबंधित या मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे महिलाओं और बच्चों या अन्य प्रकार से आपदा हो, तो उसमें केवल एक नंबर ही डायल करके या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से, वेब रिक्वेस्ट से, चैट बॉट से, किसी भी माध्यम से सूचना देकर मदद प्राप्त कर सकता है।

0: आपातकालीन परिस्थितियों में बेहद जरूरी होती है तुरंत राहत। इसके लिए डायल 112 का प्रतिक्रिया समय जितना कम होगा उतनी ही जल्दी होगा समस्या समाधान। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में डायल 112 की पहुंच को विस्तार देने के लिए यहां चार पहिया वाहनों के अलावा दो पहिया वाहनों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। इस तरह ये अभियान अब राज्य के कोने कोने में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री दीपक कुमार झा।
1: जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस है इसमें डायल 112 की शुरुआत वैसे तो काफी समय पहले से है, 2018 से है, लेकिन उस समय कुछ जिलों में ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये सेवा अभी पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। जैसे उदाहरण से हमें हमारे रेंज में केवल सरगुजा जिले में गाड़ियां थी इस पे। अभी सरगुजा जिले में पुरानी गाड़ियां थी, चूंकि इतनी पुरानी हो गई तो वो तो कंडेम्ड हो गई, उसको बदल के नई गाड़ियां तो आई गई है और अन्य जिलों में भी आ गई है। जैसे 12 गाड़ियां सरगुजा जिले में है। कोरिया जिले की बात करें तो वहां भी 5 गाड़ियां हैं। हर एक जिले में अभी वाहन है। ये सेवा एक तरह से हम कह सकते हैं जो ये आम नागरिक हैं उनको तत्काल त्वरित रूप से सहायता मिल सके उसी के लिए एक अच्छी व्यवस्था है ये। और जैसे कोई आपातकालीन हो गई कहीं पे, मान लीजिए कोई रोड पे कोई देखता है किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें पुलिस को तत्काल आना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोगों को पता नहीं रहता है कि थाने में किसको फोन करें, कहाँ करें, ये एक नंबर है मात्र पूरे प्रदेश में, मात्र एक नंबर 112। इसमें आप जैसे ही कोई आदमी फोन करेगा और बता के जानकारी देगा, लोकेशन देगा, तो पुलिस वहां पे सभी गाड़ियां जीके से लैस है। जो नियरेस्ट वाहन अवेलेबल होगी वो गाड़ी को सूचना चली जाएगी कंट्रोल रूम से और वो वाहन वहां पर तत्काल पहुंच जाएगी। कई बार अगर पुलिस तत्काल नहीं पहुंचे तो बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों का जिनकी जान का नुकसान भी हो जाता है अगर समय पर राहत नहीं पहुंचे। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेवा है। और इसमें जो है इसमें हमारे पास जो है जैसे 112 में इस बार 4-व्हीलर के अलावा कुछ 2-व्हीलर वाहनों भी दी गई है। 18 से जैसे चल रहा है तब से लगातार इसके

माध्यम से जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी घटाने का काम किया गया। पहले जैसे कि शहरी क्षेत्र में 10 मिनट था और ग्रामीण एरिया में 30 मिनट का समय रहता था, तो उसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को, माननीय सीएम महोदय का जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें इसको रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करना चाहिए ताकि पुलिस बैरक द्वारा के वाहन त्वरित रूप से जल्दी पहुंच सके और लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। और इससे जो है पुलिस के प्रति लोगों को जो विश्वास है वो निश्चित रूप से बढ़ा है। क्या होता है, देखिए जैसे थाने में कोई गाड़ी रहती है, कई जगह गई हुई रहती है और हमको उस वक्त आवश्यकता है, थाने गाड़ी उपलब्ध नहीं है, तो फिर अब पुलिस पहुंच नहीं पाती है। पहले तो दो दो घंटे, चार चार घंटे हो जाते थे स्पॉट पे जाने में। अभी क्या है, 112 के वाहन जो नियरेस्ट है वो मिलेगी, अगर कोई एक वाहन कहीं और गई है तो उसके दूर वाली जो वाहन रहेगी वो आ जाएगी। इस प्रकार से कोई ना कोई वाहन जल्दी से जल्दी वहां जरूर मौके पहुंच जाएगी, तो ये काफी अच्छी व्यवस्था है और इससे निश्चित रूप से लोगों की मदद, आम लोगों की मदद होगी। लोग उसमें काम करते हैं उनके लिए भी अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, और किस प्रकार से सर्विस के लिए है उसके लिए किस प्रकार से आवश्यक है वो उस बात को भी समझें। इसमें मुख्य रूप से महिला की सुरक्षा के जुड़ा हुआ मामला भी है, वरिष्ठ लोगों की जो वरिष्ठ नागरिक है जो विशेषकर जैसे अकेले रहते हैं उनको भी आपात स्थिति में सहायता मिल सकती है। महिलाओं के संबंध जैसे मैंने बताया, उनके उनको भी कोई इस तरह घटनाएं आती है, कोई छेड़छाड़ संबंधी कोई शिकायत करनी है, कोई कुछ और है उसके बारे में कर सकती है। आपातकालीन जैसे चिकित्सा की विजय ने पहले बताया, दुर्घटना हो जाती है उसके वजह से जो बच्चे हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, केवल उनके संबंध में भी, तो हर प्रकार से आपदा प्रबंधन में भी इसकी जो है महत्वपूर्ण वो है। और ये नंबर जो है 112 अभी 108 102 इस प्रकार की जो नंबर होते थे उन सबसे भी जुड़ा हुआ है। आपको अलग अलग नंबरों पर फोन करने की जरूरत नहीं है, 112 फोन करें, इसलिए इसका टैगलाइन ही यही है, एक के नंबर से भरा सभी काम के लिए यही एक नंबर है। निश्चित रूप से लोगों को, आम जनता को इससे काफी मदद मिलेगी 112 की इस

0: डायल 112 छत्तीसगढ़ सरकार का आम नागरिकों के लिए एक त्वरित पारदर्शी और प्रभावी कदम है। इस आधुनिक तकनीक से पुलिस व्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। एक नंबर अनेक माध्यम और त्वरित सहायता की सोच पर आधारित डायल 112 सेवा प्रदेशवासियों को किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और मदद उपलब्ध कराने का सबसे सशक्त माध्यम बन रही है। इन नए हाईटेक वाहनों के सड़क पर उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी।
1: दिलीप ध्रुव बोल रहा हूँ, धमतरी जिले से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा में कार्यरत हूँ। जो 112 की सेवा है बिल्कुल निःशुल्क है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसके 112 डायल करने पे आप आपदा प्रबंधन हो गया, अपराध नियंत्रण हो गया, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, महिला और फायर ब्रिगेड प्रकार की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। 112 कॉल करने के बाद आप लाइव लोकेशन आपका ट्रेस किया जाता है। उसके करने के बाद वहाँ के इमरजेंसी व्हीकल को और नजदीकी व्हीकल को आपके पास भेजा जाता है। 112 सीधा आप कहीं भी डायल कर सकते हैं। दुर्घटना, चिकित्सा, अग्निशामन सब प्रकार की सुविधा के लिए आप 112 कॉल कर सकते हैं। तो डायल करने से आप चिकित्सा सुविधा मिल सकता है, पुलिस सुविधा मिल सकता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए

हाईटेक वाहनों के सड़क पर उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी बल्कि आम नागरिकों को भी तेज सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी। एक नंबर सबोबर यानी डायल 112 को लेकर आम नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास की जो लहर जागी है वो उनके उत्साह से साफ जाहिर होती है। जनता अब निर्भीक है, उत्साहित है और सम्मान के साथ बढ़ रही है उजाले की

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे छत्तीसगढ़ संवाद। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:30 हुए हैं। पेश है तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना के बाद जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्याह्न के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय है शाम के 5 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि के 10 बजे। कार्यक्रम मन भवन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि के 8 बजे।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे समसामयिक बातचीत, सामयिक सूचनाओं पर आधारित आईनाक्रम, घर आंगन मेल और गीत संगीत।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। शाम 7:21 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम हेलो किसानवाणी सजीव का प्रसारण समय है 7:30। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीकांत चंद्राकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा। चर्चा के मुख्य विषय हैं खरीफ सीजन 2026 की तैयारी और KCC किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधा, लाभ एवं उपयोगिता।

दोपहर 2:30 पर आप सुन पाएंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का प्रसारण समय है

लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का प्रसारण समय है शाम 6:20। कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है रात्रि 9:15। श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे दिन में 11:05 पर। तो श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:35 हुए हैं। अब पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से, फरहान सईद और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है कुमार ने, संगीत फरहान सईद का।

फरहान सईद और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ।
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगा हर्ट्स में भी ये ला ये दे सुन सकते है।

0: हाँ अभी तो शुरू है कि सा है।
1: हाँ तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम, खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जयपुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
0: कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सत्यमेव जयते से, वाजिद की आवाज में। गीत दानिश साबरी का, संगीत निर्देशन साजिद और वाजिद का।

मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म रॉक स्टार के गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 11 बजने को हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। मीडिया में वो 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 11:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत को लिखा था नवाब आरजू ने। संगीत निर्देशन

अनु मलिक का था। इस गीत को सुनना चाहा था बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से फरमाइश करता थे मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अजान और अवान अब्बासी ने इस गीत को सुनना चाहा था। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन ने पत्र भेजा है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इस गीत को पसंद किया था राजपाल गजभिये, तन्मय अनिष्का और राधिका गजभिये ने। यवतमाल विदर्भ से संतोष खरसे और विनोद खरसे ने गीत को सुनना चाहा था। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनिए समीर का लिखा हुआ गीत सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में, संगीत अनु मलिक का है। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा। इस गीत को सुनना चाहा है मयंक रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से पत्र भेजा है उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर ने। रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से फरमाइश करता है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों से फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का ये गीत।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था इब्राहिम अश्क ने, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का था और इसे गाया था बाबुल सुप्रियो ने। इस गीत के लिए पत्र भेजा था महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हमारे श्रोता द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत को पसंद किया था। ग्राम बंगला अमटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना, अंशु माला और आशुतोष अंगारे ने पत्र

भेजा था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म खिलाड़ी का ये गीत। गीत को लिखा है श्यामराज ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से फरमाइश करता है कुमारी वंदना, गणेश, कार्तिक, परी, संजना, मालती, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबीये, राधिका गजबीये, अनिष्का और तन्मय गजबीये ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं खिलाड़ी फिल्म का ये गीत।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजिए और सुनिए कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आपकी पसंद कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनिए बादशाह फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं अभिजीत और साथियों की।

0: अभी आप सुन रहे थे बादशाह फिल्म का एक गीत, आवाज़ें थी अभिजीत और साथियों की। संगीत निर्देशन अनु मलिक का था, गीत को लिखा था जावेद अख्तर और समीर ने। इस गीत के लिए हमें पत्र आया था करनाल से सुधीरन, संदीप और मीनाक्षी का। मेन रोड तिलहरा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुनील, साहिल अंश और कुमारी सुजाता पोहरकार ने गीत सुनना चाहा था। सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान और साइमा खान ने पत्र भेजा था। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने गीत सुनना चाहा था। मोहाली से हमारे श्रोता टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा ने इस गीत को पसंद किया था। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने गीत को सुनना चाहा था।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद, आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें पत्र आया है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी का। छत्रपति संभाजी नगर से गीत सुनना चाहा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर और आरती का पत्र आया है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ये हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और बत्ता परिवार के सभी सदस्यों ने गीत की फरमाइश भेजी है। जतुका किशनपुर से हमारे श्रोता हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। कार्यक्रम में अंतिम गीत के फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चांदनी चौक गणेश पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। चांदनी चौक गणेश पंडरिया से पप्पू छोटू सेन, लता पूजा सेन ने गीत सुनना चाहा है। इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन और राजू देवांगन की फरमाइश आई है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत कोई मिल गया फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल हैं इब्राहिम अश्क के, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए फिल्म कोई मिल गया के इस गीत के साथ श्रोताओं आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडिया में और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना स्थल पर ही मतगणना कराई गई, जिसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के 10 पैक्स समितियों में यह सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। रायपुर के पास आरंग में स्थित मिवान स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस के लिए जानकारी के लिए वीडियो भी जारी किया है। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज

0: बैरन बाजार रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में अस्थिबाधित, बौने, कम सुनने तथा देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से आज उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए गए मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमला,

0: ऋषि जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेत ही रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी,
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात, क्या है?
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी,
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में

0: महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
1: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
2: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है,

0: चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो चलो,
6: अरे चलो चलो चलो, चलो मुझे
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है।

0: 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा,
3: हाँ
2: इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ।
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर, सर्दी

0: देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
1: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
0: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
1: देखिए आप,
0: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
1: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
0: मेरा अच्छा, बेटा।
1: अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडिया में वो 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 12:30 होने को है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन।

श्रोताओं, आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपसे बातें करेंगे सपना शीर्षक पर। दोस्तों, सपनों की दुनिया वाकई जादुई होती है। यह हमारे दिल का वो कोना है जहां कोई पाबंदी नहीं होती। श्रोताओं, रूह का सफर है सपना। कहते हैं जब शरीर सो जाता है तब आत्मा उन जगहों और लोगों से मिलने निकल जाती है जिन्हें वह बेहद प्यार करती है। सपने इसी सफर की तस्वीरें हैं। दोस्तों, मुस्कुराहट की वजह है सपना। कई बार हम सुबह एक अनजान सी मुस्कान के साथ उठते हैं क्योंकि रात को सपने में हमारी मुलाकात किसी बेहद प्यारे इंसान या पुरानी याद से हो चुकी होती है। दोस्तों, कभी कभी दूरियों का अंत है सपना। हकीकत में वक्त, हालात या फासले हमें अपनों से दूर कर सकते हैं, लेकिन सपनों की दुनिया में कोई दूरी मायने नहीं रखती। वहाँ आप हर पल साथ होते हैं। कार्यक्रम में बातें आपसे और करेंगे। सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आराधना फिल्म का एक गीत, आवाज थी किशोर कुमार की, संगीत SD बर्मन का था और गीतकार थे आनंद बख्शी।

दोस्तों, बातें हो रही हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम शयन में सपने शीर्षक पर। दोस्तों, दिलों का कनेक्शन माना जाता है सपना। जब दो लोग एक दूसरे को बेइंतहा याद करते हैं तो वे एक दूसरे के सपनों में पहुंच जाते हैं। सपना एक ऐसा जरिया है जहां दो दिल बिना कहे मिल लेते हैं।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना फिल्म लव स्टोरी का ये गीत। इस गीत को गाया था अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। बोल थे आनंद बख्शी के।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ।

0: है नहीं बेरा हर ज्यादा लगे मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने
1: कौन कार्यक्रम ला
0: ये दे किसान वाणी
1: हाँ
0: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं
1: हाँ।
0: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में
1: हाँ।
0: आए तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं तहा
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हाँ।
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एलाहदे सुन सकते हैं।
0: हाँ, अबे तो शुरू होएगी साहेब।
1: हाँ। तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाड़ी।

श्रोताओं, कार्यक्रम चयन में आज का शीर्षक है सपना। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग वो है जब आप रात को जिस इंसान का सपना देखकर सोए हो, सुबह उठते ही सबसे पहले उसी का प्यार भरा संदेश या चेहरा देखने को मिल जाए। हकीकत की दुनिया में दुनिया भर के नियम, बंदिशें और सीमाएं होती हैं, लेकिन सपनों की प्रेम भरी नगरी में सिर्फ आज़ादी होती है। वहाँ आप अपने साथी का हाथ थामकर सितारों पर भी चल सकते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सत्या फिल्म का ये गीत। आवाजें थी आशा भोसले, सुरेश वाडकर और साथियों की।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू।
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम, इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
2: बेबी को बेस पसंद है।
0: दोस्तों, सुकून का एहसास है सपना। जब जिंदगी की मुश्किलें थका देती हैं, तब अपनों का एक छोटा सा मीठा सा सपना भी दिल को ऐसा सुकून दे जाता है जैसे किसी ने माथे को सहला दिया हो। धड़कनों की भाषा है सपना। कई बार हम जागते हुए अपनी भावनाएं शब्दों में बयां नहीं कर पाते। सपने हमारे दिल की उस दबी हुई मोहब्बत को पूरी शिद्दत और सच्चाई के साथ सामने ले आते हैं।

अभी आपने सुना सोनू निगम और नीति मोहन का गाया फिल्म ब्रदर्स का ये गीत। श्रोताओं, सपने पर बातें हो रही हैं। दोस्तों, सपने केवल रात की नींद का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की वह मासूम ज़मीन है जहां हमारी सच्ची भावनाएं, उम्मीदें और मोहब्बत खुलकर सांस लेती हैं। जब सपनों में प्रेम का रंग घुल जाता है तो दुनिया दूरियां मिटा देती है, हकीकत की पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं और इंसान का वह असीम सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काल भैरव की आवाज में फिल्म मक्खी का ये गीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। आज का शीर्षक था सपना।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए

0: प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए गए। मीडिया में और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय है मशरूम उत्पादन।
2: किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मशरूम उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय है जिसे बंद कमरे में भूसे या पराली पर उगाया जा सकता है। इसके लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 80 से 85 नमी, अंधेरे छायादार स्थान और अच्छी स्वच्छता आवश्यक है। पैरा मशरूम छत्तीसगढ़ में पैरा पुट्टू के नाम से भी जाना जाता है एवं गांव में क्रिस्को के खलिहान में पड़े धान की पुआल की ढेरी में वर्षा ऋतु में स्वतः उगते देखा जा सकता है। उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाकर पैरा मशरूम का अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है जिसमें शैया विधि उपयुक्त एवं प्रचलित है। पैरा मशरूम उत्पादन में शैया विधि इस प्रकार है। सबसे पहले धान की पुआल के 1/2 किलोग्राम वजन के बंडल बना लेते हैं। बंडल अधिक ढीले एवं ऐठे हुए नहीं होने चाहिए। इन बंडलों को साफ एवं ताजे पानी में 16 से 20 घंटे तक डुबोकर पानी निथार लेते हैं जिससे नमी 70 से 80% तक रह जाए। लगभग 100 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम चूने में 20 बंडल को भिगोया जा सकता है। एक शैया में कुल 17 बंडल होते हैं। 4 बंडल प्रति तह के हिसाब से आड़ा एवं खड़ा रखते हैं। शेष एक बंडल के पुआल को खोलकर शैया के ऊपर ढक देते हैं। शैया जमीन से कम 1 फीट ऊपर होनी चाहिए। मशरूम बीज को 1.5% प्रति तह की दर से नीचे से 3 तह तक किनारे पर डालना चाहिए। 4th तह में पूरी शैया में बीज बिखेर कर ऊपर से थोड़ा सा बेसन भुरक दिया जाता है एवं शैया को पॉलीथीन सीट के द्वारा चारों तरफ से ढक देते हैं। इससे शैया का तापमान बढ़ेगा एवं आर्द्रता बनी रहेगी। शैया ढकने के 8 से 10 दिन के पश्चात मशरूम के पिनहेड समूह में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 2 से 4 दिनों में तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। पूरी फसल के समय 32 से 34 डिग्री तापमान एवं 85 से 90% तक आर्द्रता होनी चाहिए। मशरूम की तुड़ाई अंडे वाली अवस्था में करना चाहिए। 5 से 7 दिन बाद दूसरी फिर तीसरी तुड़ाई की जाती है। इस तरह शैया में 3 तुड़ाई द्वारा लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक मशरूम प्राप्त किया जा सकता है। सफलता के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है। मशरूम उत्पादन क्षेत्र पूरी तरह कीटाणु रहित होना चाहिए। तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। मशरूम को बहुत कम रोशनी या अंधेरे की आवश्यकता होती है। 1 किलो मशरूम बीज से उगने वाले मशरूम की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन औसतन 1.5 से 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक उपज मिल सकती है। बीज की गुणवत्ता, बिजाई का तरीका, तापमान और आर्द्रता, इन सब चीजों का सही प्रबंधन मशरूम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मशरूम उत्पादन तकनीक ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन किसानों तक पहुंच सकती है क्योंकि इसके लिए खेतों की जरूरत नहीं होती। इसे घरों के अंदर उगाया जाता है और इसमें लागत कम तथा आर्थिक लाभ अधिक होता है। मशरूम में अति विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जिसमें लाइसिन नामक अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज लवण, विटामिन B, C, D एवं नियासिन एसिड और फॉलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मशरूम की व्यावसायिक खेती की विधि अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न तापमान की जरूरत होती है। अगर मशरूम 1 या 2 दिन भंडारण करना है तो पॉलीथीन में पैक की गई मशरूम को फ्रीजर में रखना आवश्यक होता है। साधारण

0: तापमान में रखने से मशरूम जल्दी काले पड़ जाते हैं। डिब्बा बंद हेतु यंत्र अत्यधिक महंगे होते हैं और इसके लिए कई अन्य चीजों की आवश्यकता भी पड़ती है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय था मशरूम उत्पादन। मीडिया वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर केवल ईंट और दीवारों से नहीं बनता, उसकी असली नींव होती है प्यार, अपनापन, विश्वास और आपसी संवाद। जहां बातें मुस्कुराकर होती हैं ना, वहां रिश्ते खिल उठते हैं और खुशियां खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना चहेता कार्यक्रम घर आंगन, जहां इस चिलचिलाती गर्मी में भी आपको मिलती है शीतल भरी छांव। और इसी छांव में आज आपके साथ कुछ पल बिताने आई हूं मैं, चंदा श्रीवास्तव। देखिए, कहा जाता है रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है बातचीत, और ये हर मर्ज की दवा भी तो है। लेकिन आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर लोग एक ही घर में रहते हुए भी खुलकर बातें नहीं कर पाते। मोबाइल, काम का तनाव और व्यस्त दिनचर्या कई बार परिवार के बीच दूरियां बढ़ा देती है। जबकि वास्तविक सच्चाई तो ये है कि घर की छोटी छोटी खुशियाँ, अपनापन और मानसिक शांति आपसे संवाद से ही जन्म लेते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, जब परिवार में बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग सब एक साथ मिलकर हंसी ठिठोली करते हैं, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं, अपनी भावनाएं साझा करते हैं। सुख दुख की बातें जब सबको पता हो और हर परिस्थिति में हम साथ खड़े रहें, तभी तो रिश्तों में मिठास और विश्वास में मजबूती आती है। व्यस्तता कितनी भी हो, इसे जीवन का अंश, जीवन का हिस्सा और कर्तव्य समझना होगा। बच्चों के साथ खुलकर बातें करना उन्हें आत्मविश्वासी बनाता है। वहीं बुजुर्गों से बातें करना हमें अनुभव और संस्कारों से जोड़ता है। पति पत्नी के बीच मधुर संवाद घर के वातावरण को सुखद और सकारात्मक बनाते हैं। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां केवल इसलिए बड़ी बन जाती हैं क्योंकि लोग समय पर अपनी बात कह नहीं पाते, और ऐसे में बातें जो हैं वो बेवजह तूल भी ले लेती हैं, कई बार स्थिति बिगड़ भी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार में सकारात्मक संवाद का माहौल हम बना कर रखें। दिन में कुछ समय सभी लोग साथ बैठें, दिन भर की चर्चा करें, प्यार और मुस्कुराहट के साथ बातें करें, तो खुशियां हर पल आपके आसपास ही होंगी। देखिए ना, तनाव और मनमुटाव ऐसे में फिर भला कहाँ होगा। तो आइए आज ये हम संकल्प लें कि अपने घर में हम प्यार भरी बातों के साथ एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे, खुश रहकर दूसरों को भी खुशियां ही बांटेंगे। और भाई, अब तो गर्मी का समय भी है, गर्मी की छुट्टियां हैं, संवाद के जरिए रिश्तों को समेटने का सबसे सही वक्त है ये। आप मायके हो या ससुराल, जहां भी आप हैं, अपनी प्यार भरी बातों से महफिल में जान डाल सकती हैं। यदि दूरी है भी, तब भी देखिए फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी परिवार और रिश्तों से आप जुड़े रहिए, दोस्तों से जुड़े रहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सभी श्रोताओं से हम जुड़े रहते हैं और अपने रिश्तों को हम महकाते रहिए। तो बस मन का संवाद बनाए रखिए, खुश रहिए, और इसी खुशी को आइए हम भी आपसे बांटते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। इस गीत को हमने लिया है फिल्म क्या कहना से।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं,

अपना चहेता कार्यक्रम घर आंगन आप सुन रहे हैं घर आंगन सखी चंदा के साथ। और देखिए घर आंगन के इस खूबसूरत मंच पर अब समय है एक ऐसे विशेष प्रस्तुति का जो समाज जीवन और आसपास घट रही जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका आईना दिखाता है हमें एक नए नज़रिए से। तो चलिए बढ़ते हैं इसी अंक की तरफ जिसका नाम है आईनाक्रम। आइए सुनते हैं आज का ये अंक।

सखियों, जीवन के हर रंग को समझने और समाज की सच्चाइयों को करीब से जानने का एक खास माध्यम होता है हमारा आईना क्रम, जहां मिलती हैं जानकारी, जागरूकता और नई सोच के साथ ढेर सारी प्रेरणा। तो आइए जानते हैं इन्हीं प्रेरणा स्रोतों के बारे में। सबसे पहली खबर पद्म पुरस्कारों की। विगत सोमवार को राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडल देश की अनमोल प्रतिभाओं की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 66 अनमोल प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिनमें 19 महिला पुरस्कार विजेता भी शामिल थी। हिंदी फिल्म संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण और भारतीय महिला क्रिकेट की रन मशीन और कप्तान हरमनप्रीत कौर और महिला हॉकी की शानदार खिलाड़ी सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वाह, नारी ने फिर आज लिखा है संघर्षों का मान, मेहनत की हर बूंद बनी पद्म सम्मान की शान, हौसलों की रोशनी से जगमग हुआ जहान, उनके कदमों से ऊंचा हुआ भारत का अभिमान। इसके साथ ही और भी बहनों ने हमारे देश का अभिमान बढ़ाया है, आइए हम आपको बताते हैं उनके बारे में भी। परिवार के साथ ली समाज की जिम्मेदारी, 2 दशक में बचाया अरबों लीटर पानी, और ये कारनामा किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश की सावित्री श्रीवास्तव ने, जो जल संरक्षण की दिशा में एक ऐसा नाम बन चुकी है आज, जिनके द्वारा बनाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट पूरे देश में पानी बचाने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। पटियाला में जन्मी सावित्री ने BSc तक की पढ़ाई की है। विवाह के बाद जब वे ससुराल आईं, तभी से जल संरक्षण की मुहिम छेड़ दी आपने और इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। दैनिक जीवन में पानी बचाने की कवायद करने के बाद इन्होंने सूखे पड़े हुए कुएं, बोरवेल्स और बावड़ियों को रिचार्ज करने का काम भी किया। इसके लिए हजारों वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने का काम किया गया, जिसमें रेन वाटर सीधे भूमि में जाकर भूजल का स्तर बढ़ा रहा है। इस अनूठे और उल्लेखनीय कार्य के चलते वर्ष 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने आपको वाटर वुमेन की उपाधि से भी नवाजा है। सचमुच सावित्री जी के समर्पण ने यह बता दिया है कि जब महिलाएं घर परिवार के साथ समाज का दायित्व भी उठा लें, तो एक बड़ा बदलाव जरूर संभव है। टीचर की बेटी बनी राष्ट्रपति की पहली महिला ADC। जी हाँ, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC नियुक्त होकर इतिहास रच दिया है। 27 वर्षीय यशस्वी हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली हैं, जिन्होंने 2012 में NDA परीक्षा पास कर लॉजिस्टिक ब्रांच के माध्यम से नौसेना ज्वाइन की। ADC के रूप में इनकी नियुक्ति अप्रैल 2025 में हुई और एक महीने के ट्रेनिंग के बाद मई 2025 में इन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस सफर की बुनियाद यशस्वी ने 7वीं क्लास से ही रख ली थी, जब स्कूल के गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स पायलट को देखकर उनकी वर्दी से प्रेरित होकर इन्होंने सेना में जाने का सपना देखा और जुट गई उसे साकार करने में। बैडमिंटन और वॉलीबॉल के खेल ने उनकी शारीरिक फिटनेस को खूब निखारा और फिर वे चयन के सभी पैमानों पर खरी उतरी। इस पोस्ट के लिए उन्हें एक टफ ओरिएंटेशन से भी गुजरना पड़ा। 15 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रहकर उनकी शारीरिक दक्षता, बुद्धिमता और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता को भी परखा गया। राष्ट्रपति ने खुद उनका इंटरव्यू लिया। वाकई ये कोई साधारण नियुक्ति नहीं सखियों। आप भी उत्सुक होंगी ये जानने को कि आखिर ADC करते क्या है। तो ADC के रूप में वह राष्ट्रपति के बैठकों और दैनिक कार्यों में सहायता करती हैं। इनकी भूमिका राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के बीच एक ब्रिज की तरह होती है। ये हाई लेवल मीटिंग्स को भी मैनेज करने का काम करती हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी की यह नियुक्ति भारतीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत

गर्व है हमें अपनी बेटी के इस उपलब्धि पर। और ये खास खबर अपने राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां राजनांदगांव की बेटी सुष्मिता सिंह ने यूपीएससी क्रैक कर आईएफएस पद के साथ बढ़ाया है छत्तीसगढ़ का मान। श्रोताओं, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य पाना संभव है, और इसी बात को सच कर दिखाया है राज्य की बेटी सुष्मिता सिंह ने, जो राजनांदगांव में पली बढ़ी। यहीं से प्रारंभिक शिक्षा के बाद बिलासपुर से ट्वेल्थ किया, तकनीकी शिक्षा के लिए देहरादून का रुख कर वहीं से कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी किया आपने, और फिर शुरू हुई कारपोरेट जगत की नौकरी। अच्छी तनख्वाह और रुतबा भी था, लेकिन उनका असली सपना तो सिविल सेवा का था, इसलिए नौकरी छोड़ने का साहसी फैसला लेकर आप जुट गईं यूपीएससी की तैयारी में। आगे का सफर भला आसान कहाँ था, निराशा के पल भी आए, लेकिन हार ना मानने की जिद भी तो साथ थी ना, लगी रही पूरे जुनून के साथ। और फिर पांचवें प्रयास में इस चक्रव्यूह को भेद कर दिखा दिया कि संयम और एकाग्रता का कोई विकल्प है ही नहीं। बड़े ही विनम्रता से अपनी कामयाबी का श्रेय वो अपने माता पिता की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और परिवार के मजबूत साथ को देती हैं। देश के युवाओं के लिए सुष्मिता का स्पष्ट संदेश है, निरंतर मेहनत, असीम धैर्य और खुद पर दृढ़ विश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। अपनी बेटी की इस सफलता से हम सभी गौरवान्वित हैं। तुम्हें ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो ये तमाम उपलब्धियां सिर्फ हमारी जानकारी के लिए नहीं, हमारी प्रेरणा के लिए है। इनसे हमें प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी आने वाली बाधाओं को दरकिनार कर आगे बढ़ने का संकल्प लेना है। उम्मीद है आप भी अपनी मंजिल की ओर राह बढ़ा रही होंगी। आईना में आज बस यहीं तक सखियों। सखियों, ये था सूचनात्मक कार्यक्रम आईना। और देखिए, अब इसके बाद वक्त है आपके बहुत सारे खूबसूरत मेल्स का, आपको भी इंतज़ार होगा अपनी फरमाइशों का। तो आइए शुरू करते हैं घर आंगन मेल, और इसमें सबसे पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा, और साथ ही साथ रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें मेल भेजा है उदयभान पाल, जयहिंद पाल, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनका पूरा परिवार। चूड़ी लाइन मुंगेली से हमें लिखा है मोहम्मद इसफाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद इसफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और परिवार के सभी सदस्य। आप लिखते हैं, आदाब, कार्यक्रम में आपके प्रस्तुति का अंदाज बेहद सटीक और शानदार है, आप खुश रहिए और हंसती मुस्कुराती रहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए और इन शब्दों के लिए। दतरंगी भाटापारा से भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी, रजनी, प्रतिमा रानी, द्रौपदी, धनेश्वरी, पायल वर्मा। इसके साथ है पीपरलोड सरगांव मुंगेली से भी हमें मेल किया है इन श्रोताओं ने, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, दीपेश, शिवांश वर्मा, और साथ में डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे नियमित श्रोता हैं, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, साथ में है देवशंकर तामुरिया जी। बन भगेरा राजनांदगांव से हैं आशा सारवा, अंजलि, करीना सारवा, नीरज, नीलेश और योगेश सारवा जी। आप सभी का आपके मेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगेगा यदि अगली बार आप अपने मेल में हमारे कार्यक्रम की समीक्षा भी करें। हम इंतज़ार करेंगे आपके इस पहल का। और अब आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म बेमिसाल से आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आपके मेल्स की जो सौगातें हमें मिली हैं उसके अगले क्रम में ये मेल है मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से हमें लिखा है उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक ने। लच्छनपुर जिला बालोदा बाजार से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश साहू जी। रानीगांव नगरी से चित्ररेखा साहू, उर्वशी साहू, राधाबाई, चंदा वीणा साहू और सेजल साहू जी। जेल रोड रायगढ़ से हमारे श्रोता हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, यामिनी और उमा तिवारी जी। कमल विहार रायपुर से हमें लिखते हैं कौशल गोस्वामी, बेबी जोई और रिंकी गोस्वामी जी। आपने लिखा है, सभी बहनों को हमारा नमस्कार। शनिवार 30 मई और रविवार 31 मई का घर आंगन जिसे चंदा श्रीवास्तव जी ने पेश किया था आपको बहुत अच्छा लगा और लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्रोताओं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे सुना और इसे सराहा है। और सच कहें तो आपके इन तारीफ़ों से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत सार्थक हुई। आगे भी इसी तरह का प्रयास रहेगा हमारा। और अगला मेल हमें मिला है श्रोताओं आर्यनगर कोहका भिलाई से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी। आपने लिखा है, नमस्कार। ज्येष्ठ का प्रखर सूर्य हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अपना प्रकाश और आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने देना चाहिए। बहुत खूबसूरत लाइनें आपने लिखी हैं। ज़रूर परिस्थितियां हम सब के जीवन में ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन सच्ची समझदारी इसी में है कि हम तालमेल बैठा कर चलें, क्योंकि हमें जीवन जीने का पूरा हक है और जीवन एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना इसे बड़े ही खूबसूरती से जिया जाए। आप सबके मेल के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद आपका। और अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये बहुत अच्छा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कामचोर से अपनी पसंद का ये गीत, और चलते चलते ये आखिरी मेल धमधा सुकरी कला से अमित जंघेल जी, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, दिनेश वर्मा, आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म श्री 420 से ये गीत।

श्रोताओं, ये थे आपके मेल्स और आपके फरमाइशी गीत। देखिए, रिश्तों की डोर तब और मजबूत हो जाती है जब आपकी बातें दिल से दिल तक पहुंचती हैं, और आपके इन मेल्स ने बेशक हमारे

रिश्तों में अपनापन घुला है, तो दिल से आभार और बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत सौगातों के लिए। और कुछ मीठी बातें, कुछ हंसी के पल यादों से महकाया है आपने आज का हर पल। आपके स्नेह की यही रहे छांव, खुशियों से महकता रहे हर आंगन हर गांव। आज घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी चंदा को बस यहीं विदा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडिया वेब और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ईमेल की गूंज सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ रिजवान। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म घातक के इस गीत के साथ। आवाजें हैं शंकर महादेवन, अलका याग्निक और अनु मलिक की। संगीत निर्देशन अनु मलिक का है। गीत को लिखा है और राहत इंदौरी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना घातक फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन अनु मलिक का था, गीत को लिखा था राहत इंदौरी ने, आवाजें थी शंकर महादेवन, अलका याग्निक और अनु मलिक की। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा था ग्राम दवनसरा पोस्ट दवना जिला सूरजपुर से कपिल राज देवांगन, दखल कल्लू भाई, जहांगुरलाल, ब्रजेंद्र चक्रवर्ती, उदेश्वर देवांगन और दिल भरन ने। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता थे विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर ने गीत सुनना चाहा था। दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, यह हमारे श्रोता हैं खंडवा से। रघुवीर नगर नई दिल्ली से गीत को पसंद किया था श्रुति और कुरन ने। रश्मि झरना, भरत कुमार, इन्होंने ईमेल भेजा था राजकोट गुजरात से।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ईमेल की गूंज कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा का। खोपटी से हमारे श्रोता हैं वंडू और लोहार, ग्राम बंगला मटिया, बालों से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना आशुतोष अंगारे ने गीत सुनना चाहा है, उदयपुर

पंडू और लोहार, ग्राम बंगला मटिया, बालों से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना आशुतोष अंगारे ने गीत सुनना चाहा है। उदयपुर से ईमेल भेजा है रमेश भारती और विनीत ने। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू ने गीत सुनना चाहा है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी ने गीत सुनना चाहा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना ने गीत सुनना चाहा है। किशनगंज बिहार से हमारे श्रोता हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया और माधुरी किरण। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, बोल हैं समीर के, संगीत अनु मलिक का है।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों से फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत। बोल थे समीर अरुण भैरव के और संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी और प्रमोद कुमार डूडी का। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजाक और मुरली क्षत्रिय ने गीत सुनना चाहा है। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने गीत सुनना चाहा है। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से गीत सुनना चाहा है ओटी शिवाश, शेख आजाद और पोपो रानी ने। अकोला से हमारे श्रोता हैं सुयश राय, अलका राय, दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया फिल्म क्योंकि का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

शुदा अभी आप सुन रहे थे क्योंकि फिल्म का ये गीत। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था और गीतकार थे समीर। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनिए साजिद वाजिद अली के संगीत निर्देशन में फिल्म चोरी चोरी का ये गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चोरी चोरी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी अलका याग्निक और साथियों की। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा था राजकोट से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन, कुसुम कलावती और जगदीश जौहरी ने। राजधानी रायपुर से ईमेल आया था नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का। बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू ने ईमेल भेजा था। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। पश्चिम बंगाल से हमारे श्रोता मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने गीत को पसंद किया था। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अंतिम गीत के लिए फरमाइश आई है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद, सभिया और मिखाइल जैनब ने गीत सुनना चाहा है। दादरी गेट, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने गीत को सुनना चाहा है। दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी ये हमारे श्रोता हैं खंडवा से। वैष्णव कॉलोनी सनावा से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री ने गीत सुनना चाहा है। महाराष्ट्र से ईमेल आया है शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल का। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ये हमारे श्रोता हैं नरगोला छत्तीसगढ़ से। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कांटे, बोल हैं आनंद राज आनंद और संगीत निर्देशन भी आनंद राज आनंद का है।

मीडिया में वो 288.9 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार का अंक कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन

0: लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की

0: रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर समाचार का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रिले किया गया। मीडियम है वो 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गज़ल। गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा का आप लुत्फ उठा रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गुलजार की रचना में गुलाम अली की गाई ये गज़ल।

सहमा सहमा डरा हुआ सा रहता है। इस गज़ल को अभी आप सुन रहे थे ग़ुलाम अली के आवाज़ में, रचना थी गुलजार की। गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से किया जा रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए हरी हरन की गाई ये गज़ल।

अंसारी की। आप लुत्फ उठा रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गज़लों के कार्यक्रम गीत गंधा का। कार्यक्रम में आप सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की गाई ये गज़ल। आप लुत्फ उठा रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गज़लों के कार्यक्रम गीत गंधा का।

चित्रा सिंह की गई इस गजल के साथ श्रोताओं आज गीत गंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं कार्यक्रम सभा समाप्त करने से पहले आइए हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण। श्रोताओं हमारी सांधिकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोंठ के साथ। 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भजन संध्या कार्यक्रम। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी का प्रसारण करेंगे 5:30 पर। 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी होगा 6:30 पर। 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण करेंगे 7:20 पर। साथ ही होगी किसानवाड़ी 7:30 पर। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, जो कि आधारित है सोशल मीडिया श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर मनी टॉक और मंथन कार्यक्रम। ईमेल की गूंज कार्यक्रम

क्रम लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे, और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 238.99 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:02 होने को हैं। मीडिया वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर सांधिकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी

0: सी कुल्हाड़ी कंचनपुर पड़ोली जमीरा मसगा डांडपारा सायर कुमडेवा लक्ष्मणगढ़ उदरबसवार केदमा जगन्नाथपुर ढोढ़ागांव कठबुड़ा शिवनाथपुर घासीडी दातीढाप घटगांव बरडांड चोरकी पानी कंडराजा पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर रानी कोम्बो कुंजारा लोटापानी मयूरचुंदी बरटोली खड़ामाचा चट्टान पारा महुआडी खुटसेरा पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव पोटिया ओंगना चैनपुर रुपुंगा बोजिया बनहर औरानारा बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी सलिहा भाटा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरी कादर फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर बंगूरसिया जुनवानी चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं केदारनाथ फिल्म का ये शिव भजन अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और धुन अमित त्रिवेदी का।

तृप्ति शाक्या के गाए इस भक्ति गीत के बाद आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुमित टोपो के संयुक्त स्वर में ये भक्ति गीत। गीतकार हैं शेखर अस्तित्व और संगीत निर्देशन है मयूरेश पाल का।

भजन संध्या के अंत में आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल का गाया ये भजन। गीत के बोल लिखे हैं मुरली अग्रवाल ने और संगीत से सजाया है राज आशु ने।

श्रेया घोषाल के गए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 होने को हैं। वक्त हो चला है युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार दोस्तों, आज की युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता और समय की असली पहचान है महीने। हर महीने अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, कभी नया मौसम, कभी नया त्यौहार, तो कभी जीवन की नई सीख। कभी ये मौसम की ठंडक से जुड़ा होता है, कभी तपती धूप से, कभी त्यौहारों और कभी फसलों से। सच मानिए, अगर ध्यान से देखें तो हर महीने की अपनी एक कहानी होती है। दोस्तों, जनवरी साल की शुरुआत का महीना है। ठंडी हवाएं, नए साल की खुशियां और मकर संक्रांति का उत्सव इस महीने को खास बनाते हैं। यह हमें बताता है कि नई शुरुआत हमेशा उम्मीद और जोश के साथ करनी चाहिए। फरवरी छोटा महीना है लेकिन बड़ा प्यारा। बसंत ऋतु का आगमन होता है और बसंत ऋतु हमें ज्ञान और शिक्षा का महत्व समझाती है। यह हमें महीना बताता है कि जीवन में रंग और मधुरता भी जरूरी है। मार्च आते ही मौसम बदल जाता है और होली का त्यौहार खुशियां बिखेर देता है। यह महीना हमें सिखाता है कि मन की नाराजगी और दूरी को रंगों की तरह मिटाकर रिश्तों को ताज़ा रखना चाहिए। अप्रैल में गर्मी की दस्तक होती है और स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत होती है। हमें ये बताता है कि शिक्षा ही जीवन की असली पूंजी है। फिर आता है

मई का महीना। मई तो हमें गर्म महीना होता है। धूप और लू हमें धैर्य और सहनशीलता का सबक देती है और ये हमें सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जून का महीना आते ही बारिश की बूंदें धरती को ठंडक देती हैं। यह महीना हमें उम्मीद की ताकत दिखाती है और मुश्किल के बाद हमेशा राहत आती है। जुलाई में बरसात पूरे जोर पर होती है। खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं। किसान की मुस्कान हमें बताती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस आता है। यह हमें आज़ादी के महत्व और बलिदान की याद दिलाता है। अगस्त की कहानी है देशभक्ति और एकता की कहानी। सितंबर शिक्षा और संस्कार का महीना है। शिक्षक दिवस हमें गुरु के महत्व की याद दिलाता है। ये महीना हमें ज्ञान और आदर करना सिखाता है। फिर आता है त्योहारों का महीना अक्टूबर। नवरात्रि और दशहरा अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और साहस ही असली ताकत है। नवंबर दीपावली के उजाले से चमकता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। दिसंबर साल का आखिरी महीना है। ठंडी हवाएं और क्रिसमस का उत्सव इसे और ख़ास बना देता है। यह महीना हमें बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत की तैयारी है। दोस्तों, अगर ध्यान से सोचें तो हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कभी ठंडी सर्दी, कभी तपती गर्मी, कभी खुशियों की बरसात और कभी कठिनाइयों का सामना, लेकिन हर दौर हमें मजबूत बनाता है। इसलिए महीनों की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर पल, हर परिस्थिति, हर मौसम का अपना महत्व है। जिस तरह साल बिना 12 महीनों के अधूरे हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी बिना अनुभवों और सीखों के बिना अधूरा है। हमारा काम है हर महीने की उस सीख को अपने जीवन में उतारना और आगे बढ़ते रहना। तो दोस्तों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं कि जिसे हमने लिया है फिल्म हम आपके हैं कौन से, जिसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी वाला सुब्रमण्यम की, गीतकार हैं रविंद्र और संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम युवा कलाकार में, जिसे लेकर आ रही है हमारी साथी चंचला यादव, जिन्होंने बातचीत की है सिंगर श्रुति अग्निहोत्री जी से।

0: स्वागत है साथियों, आप सभी का क्रम युवा कलाकार में। मैं हूं आपकी दोस्त चंचला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक युवा साथी से जो कि एक गायिका हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रुति अग्निहोत्री है। मैं अंबिकापुर की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे संगीत की शिक्षा दे रही हूँ।
0: आप संगीत की शिक्षा दे रही हैं श्रुति जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत के प्रति आपको रुझान कैसे आई।
1: मेरे घर का माहौल ही संगीतमय था और अभी भी है। मेरे घर में बचपन से ही मैंने मम्मी को, पापा को, भैया को, सभी को गाते हुए देखा है, सुना है। मैं 5 साल की उम्र से ही गाना गाया करती हूँ और आज भी गा रही हूँ। मेरे यहाँ भजन मंडली हुआ करती थी। मेरे पापा, भैया, मेरी माँ सभी गाया करते थे। उनको देखकर मैंने गाना सीखा और जो परंपरा पहले चल रही थी वो आज भी कायम है। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: जैसे कि आपने बताया कि आपका घर जो है, आपके घर में ही संगीत का कल्चर रहा है शुरू से ही, तो आपको घर में ही किसी से इंस्पिरेशन मिली होगी संगीत को लेकर।
1: जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल ही वैसा है। मैंने बचपन से मेरी माँ को गाते हुए देखा है, सुना है। मेरी पहली शिक्षा मुझे माँ से ही मिली। मेरी पहली शिक्षिका मेरी माँ ही रही हैं।
0: आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
1: मैंने जबलपुर से संगीत में ग्रेजुएशन किया हुआ है।
0: जब आपने संगीत की शिक्षा लेने की सोची तो परिवार वालों का सपोर्ट कैसा रहा? किसी ने कोई विरोध तो नहीं किया आपकी संगीत की शिक्षा को लेकर?
1: नहीं, मेरे परिवार वालों ने तो मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैं उन्हीं के कारण आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैं स्कूल जाया करती थी, वहाँ से जब मैं आती थी तो मेरी माँ वेट किया करती थी कि कब हम लोग बैठेंगे साथ में, रियाज करेंगे, गाना गाएंगे। और जो छोटी छोटी एक गलतियाँ होती थी वो मेरी माँ जज किया करती थी कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो मेरी माँ मुझे बहुत कुछ सिखाया करती थी। और फिर मेरी माँ

0: का इंतकाल हो गया, उसके बाद मेरे भाई ने पूरा सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छी तरह संगीत सिखाया।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने श्रुति जी, आपकी फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा रहा आपकी शिक्षा को लेकर। श्रुति जी, संगीत के अलावा आप और भी कोई शिक्षा ग्रहण कर रही हैं?
0: जी हाँ, मैं संगीत के साथ साथ बीएड भी कर रही हूँ।
1: मैंने सुना है कि बीएड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और पढ़ाई भी होती है, तो पढ़ाई के दौरान आप संगीत के लिए समय कैसे निकालती हैं?
0: देखिए, संगीत के लिए समय निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब जैसा समय मिलता है मैं गुनगुनाते रहती हूँ, और सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो मैं रियाज़ करती हूँ।
1: जब संगीत की बात हो ही रही है श्रुति जी, तो आपकी पसंद का एक गीत सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल, क्यों नहीं।

0: वाकई में श्रुति जी, आपको ईश्वर ने बहुत ही सुंदर आवाज दी है। ऐसा लग रहा है मैं आपके गाने सुनकर मैं खुद ही मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। आप इतना अच्छा गाना गाती हैं श्रुति जी, आप बता सकती हैं कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ गाना गाया है, किस किस क्षेत्र में गाया है?
1: मैं स्कूल के समय से ही गाती आ रही हूँ। मैंने स्कूल में और बाहर भी गायन प्रतियोगिता में भाग लिया है और बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं।
0: बहुत बहुत बधाई श्रुति जी आपको इसके लिए। क्या आपको वाद्य यंत्र बजाने में भी रुचि है?
1: जी, मैं बहुत सारे वाद्य यंत्र बजा लेती हूँ, जैसे हारमोनियम, तबला, ढोलक। मुझे इन सारी चीज़ों को बजाने का बहुत शौक है।
0: हम आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं?
1: भविष्य में मैं एक संगीत संस्थान खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देना चाहती हूँ, ताकि जो हमारी आज की पीढ़ी है वो शास्त्रीय संगीत को जाने और उसकी तरफ आकर्षित हो।
0: बहुत अच्छा श्रुति जी, आप आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रही हैं, उनके भविष्य के बारे में। आपने जब शास्त्रीय संगीत की बात की तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, ये आज के जो युवा हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान कम दिखा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है?
1: देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी वेस्टर्न की तरफ या वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि म्यूज़िक तो म्यूज़िक होता है, जो हमें सुकून देता है, हमारी जो दिन भर की थकावट है वो दूर करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी युवा शास्त्रीय संगीत को पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे भी युवा होते हैं जो शास्त्रीय संगीत को पसंद भी करते हैं और उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और उसकी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं।
0: हमारे जो श्रोता साथी सुन रहे हैं, जो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं, श्रोता साथियों को आप संगीत को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं हमारे श्रोताओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वे संगीत की शिक्षा लेना चाहते हैं या संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अब संगीत की शिक्षा देने लगे हैं। संगीत में डिप्लोमा, डिग्री और आजकल तो PhD भी होने लगी है। तो जिसे भी संगीत में रुचि है वो 12वीं के बाद इस फील्ड में आगे जा सकते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं।

0: बहुत ही अच्छा संदेश दिया श्रुति जी आपने श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपका, जो आपने हमारे श्रोता साथियों को इतना अच्छा संदेश दिया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी बताए। श्रुति जी, जाते जाते आप हमें अपनी प्यारी सी सुंदर सी आवाज़ में एक और गीत सुनाना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मैं ये गीत अपनी माँ के लिए गाना चाहती हूँ। तो कित

मुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई।

बहुत अच्छा गाना गाया श्रुति जी आपने। आपका ये गीत सुन के तो हम सबको अपनी माँ की याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने संदेश भी हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा दिया और हम आशा करते हैं कि आपका भविष्य संगीत के क्षेत्र में उज्जवल हो और आप हमारे क्षेत्र, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगी। इसी के साथ क्रम युवा कलाकार से अपनी दोस्त चंचला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना क्रम युवा कलाकार में सिंगर श्रुति अग्निहोत्री जी से बातचीत। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम फिल्म संगीत में और सुनते हैं गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मोहरा से, जिसमें आवाजें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की, गीतकार हैं इंदवर और संगीत से सजा है विजू साहनी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दोस्तों फिल्म कोई जाने ना का ये गीत। लक्ष्मिंदर और नीति मोहन की आवाजों में गीतकार हैं मनोज और संगीत से सजा है रोचक कोहली और विक्रम नेगी ने।

वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज की युवाणी से जाने से पहले मैं बता दूं आपको कल के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे एक नए विषय पर युवा सोच और क्रम, इनसे मिलिए। तब इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन

0: ऑनलाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मिडवेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु में ईमानदारी विषय पर विचार। संकलन एवं वाचन है मृदुल गुप्ता का।
2: ईमानदारी प्रदर्शन का विषय नहीं है और न ही इसके एवज में कोई आकांक्षा रखनी चाहिए। ये नितांत स्वांतः सुखाय और परहिताय का विषय है। ये सच है कि आज जब जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ईमानदारी के पथ पर चलने का संयम किसी तपस्या से कम नहीं। पर एक सच ये भी है कि ईमानदारी के पथ पर चलते हुए जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो किसी और तरह से हासिल नहीं हो सकती। ईमानदारी मन मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है और ये शीतलता एक ईमानदार व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में भी नजर आती है। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आसपास के लोग या दफ्तर के सहकर्मी भ्रष्टाचार के पैसे से जब शानो शौकत से रहेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, उनके पास महंगी गाड़ियां होंगी, उनके बच्चे बड़े नाम वाले स्कूलों में पढ़ेंगे, तब इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में ही मन को नियंत्रित करने की कठिन परीक्षा होगी। अगर आप विचलित हो गए तो इसका मतलब ईमानदारी को आपने पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया। अभी मन को और तपाने की जरूरत है। मन को नियंत्रित कर लेने के बाद ईमानदारी की राह आसान हो जाती है। फिर इंसान जीवन की चमक दमक से प्रभावित नहीं होता। सादगी और सच्चाई जीवन का उद्देश्य बन जाती है। जब जीवन में सच्चाई, सादगी और उसूल हो तो इससे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है। उसूलों के बिना जिंदगी दिशाहीन होती है। सादे जीवन में ही उच्च विचार पनपते हैं। ईमानदारी की राह पर चलते हुए मन को एकाग्र और संयमित करना भी जरूरी है। ईमानदारी को किसी तय सांचे में नहीं ढाला जा सकता। इसका कोई निश्चित रूप स्वरूप भी नहीं है। हर

0: व्यक्ति के लिए ईमानदारी के अलग अलग मायने हैं। एक विद्यार्थी के लिए अध्ययन ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो पूरे मनोयोग से अध्ययन करता है और नकल किए बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उस विद्यार्थी को ईमानदार कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी ऑफिस के क्लर्क या अधिकारी, पुलिसकर्मी, चिकित्सक, जज या किसी पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रहा है तो वो भी ईमानदार कहा जाएगा। चाहे कोई किसान हो, सरहद पर तैनात जवान या खेल के मैदान में अपने प्रदर्शन से देश को पदक दिलाने वाला खिलाड़ी, जो अपने दायित्वों को समझते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर ईमानदार है। इसके ठीक विपरीत कोई कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही बरतता है तो वो कतई ईमानदार नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि ईमानदारी का संबंध सिर्फ पैसे के लेन देन या रिश्वतखोरी से नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कार्यालय से लेकर घर और अपने पारिवारिक संबंधों में भी ईमानदार रहने की जरूरत है। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी की दरकार है। इसके बिना जीवन बनावटी और काले लोहे पर दिखावे के लिए चढ़ी सुनहरी चमकदार परत की तरह हो जाता है, जिसका रंग कभी भी उतर सकता है और सच्चाई सामने आ सकती है। ईमानदारी की राह पर चलने का एक अचूक नुस्खा है कि अपने मन को नियंत्रित कर उतना ही व्यय करें जितनी आय हो। ऐसा कर पाने पर ईमानदारी की राह आसान हो जाती है, लेकिन अमीर बनने और दिखावे की स्पर्धा में कुछ लोग ठीक इसके विपरीत चलते हैं। यही हमें ध्यान देने की, खुद को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। ईमानदारी जीवन शैली है। इस जीवन शैली को अपनाकर हम अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए मिसाल बन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में ईमानदारी विषय पर विचार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के हो ही मतगणना, यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कुंडापल्ली गांव पहुंचिन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करिन। और धमतरीहा देश के पहली ऐसन जिला बन गया हवे जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाए जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हां कहिन है कि शिक्षा सशक्तिकरण के एक ठन शक्तिशाली साधन है। शिक्षा लोगन ला आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाते। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी मन ला संबोधित करत राष्ट्रपति हां कहिन कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सबो वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप ले प्रगति करें। राष्ट्रपति हा कहिन कि युवा मन हा राष्ट्र के शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतिनिधित्व करते। ओमन हा युवा मन ले विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवा मन ले आग्रह करिन कि ओमन हा अपन जड़ ला सुरता रखें। राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर मतदान काली शांतिपूर्ण ढंग ले होइस। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद पर हुए मतदान में 84.58% मतदाता मनहा अपन मताधिकार के प्रयोग करिन। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगी। आयोग बताइस कि मतदान के दौरान कोनो भी क्षेत्र ले अप्रिय घटना के सूचना नहीं मिले है। नगरीय निकाय के मत के गिनती 4 जून के करे जाही। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत पर हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल में ही कराएगी, जिसका परिणाम के घोषणा 4 जून के करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला

0: के कोंडापल्ली गांव पहुंचीं। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन के समस्या सुनीन। मुख्यमंत्री हा अधिकारी मन ला निर्देश दीन कि जन चौपाल मा मिले सबो आवेदन और समस्या के समय सीमा मा निपटारा करे जाए। श्री सायहा कहिन कि सुशासन तिहार सिर्फ एक ठन प्रशासनिक अभियान नहीं है, फिर यह सरकार और जनता के बीच विश्वास ला और ज्यादा मजबूत करे के माध्यम है। मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मन ला भरोसा देवाइन की उनकर समस्या के निपटारा बर सरकार हा पूरा जिम्मेदारी ले काम करत है। जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री हा आने आने विभाग मंडहा ले लगाए गए स्टॉल के अवलोकन करीन। उन्हें हितग्राही मनला वन अधिकार मान्यता पत्र, जातीय निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजना संग्रह, दूसर योजना मन के बारे में जानकारी दीन। मुख्यमंत्री हा आत्मसमर्पित माओवादी दंपति मंडहा ले संचालित किराना दुकान घलो पहुंचीन और उनकर जीवन में आए सुघर बदलाव के तारीफ करीन। एकर पहले मुख्यमंत्री श्री साय काली नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ क्षेत्र के गारपा और कोंडा गांव जिला के बड़े कनेरा पहुंचीन। गारपा में राखे गए जन चौपाल में मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मन ले सोझे गोठ बात करके उनखर मन के समस्या सुनीन और क्षेत्र भर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा ले जुड़े कतकोन विकास काम के घोषणा करीन। उन्हें बड़े कनेरा में राखे गए समाधान शिविर में उमनहा कोंडा गांव जिला बर 152 करोड़ रुपया ले ज्यादा के 43 ठन विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारी मनला आर्थिक रूप ले मजबूत बनाए बर 1-30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला के आयोजन करे जावत थे। नगरी प्रशासन और विकास विभाग डहर ले राखे गए ये अभियान में स्ट्रीट वेंडर्स मनला ऋण सुविधा, UPI और QR कोड जैसन डिजिटल सेवा देवाए जाहे। संगे संग उमनला जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और दूसर जन कल्याणकारी योजना मन ले घलो जोड़े जाहे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। धमतरी जिला हा देश के पहली ऐसन जिला बन गया हवे जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी पैक्स के माध्यम ले किसान मनला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाए जाही। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के अगुवाई में जिला के 10 ठन पैक्स समिति मा ये सुविधा शुरू करेगी है। लोहरसी मा राखे गए कार्यक्रम में ये पहल के शुरुआत करेगी और प्रशिक्षित ड्रोन पायलट मन ड्रोन स्प्रेयर के प्रदर्शन करें। अधिकारी मन के अनुसार ड्रोन तकनीक ले उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव कमती बेरा और कमती लागत में करे जा सकी। राज्य में यात्री बस के किराया में बढ़ोतरी लाले के परिवहन विभाग हा बस संचालक मन संघरा बैठका करके उनकर समस्या और मांग के बारे में गोठ बात करें। बस संचालक मन हा बतें कि बच्छर 2021 के बाद ले किराया में बढ़ोतरी नहीं हुए है, फिर डीजल के कीमत में सरलग बढ़ोतरी हुए है। उमन हा डीजल के दाम के अनुसार किराया तय करे बर स्थायी व्यवस्था बनाए के मांग करें। परिवहन विभाग हा कहे है कि दूसर राज्य के किराया दर के अध्ययन करके जल्दी फैसला करे जाही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में देहरादून में राखे गए कार्यक्रम में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ला पर्यावरण चैंपियन अवार्ड ले सम्मानित करेगी है। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र डहले पाछू बछर में जैविक खेती ला बढ़ावा देबर वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधि, नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम, किसान और विद्यार्थी मन बर प्रशिक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सुघर काम करेगे है। उन्हें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के सेमरा के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय लाघलो राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण चैंपियन अवार्ड दे जाही। ये विद्यालय के चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता ले जुड़े काम मा सुघर प्रदर्शन भर करेगे है। उन्हें विश्व पर्यावरण दिवस में 5 जून के रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहले पोस्ट प्रतियोगिता आयोजित

0: रही प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें। विषय मा हुवैया ये प्रतियोगिता मा चार आयु वर्ग के प्रतिभागी मन हा भाग ले सकी। रेलवे प्रशासन हा यात्री मन के सुविधा बर रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस ला 1 अगस्त ले हर दिन चलाए के फैसला ले है। उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून ले 2 जुलाई तक 5-5 चक्कर बर समर स्पेशल ट्रेन घलो चलाए जाही। अब पेश है मौसम के हाल। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश और ओखर लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। उन्हें एक ठन दूसर द्रोणिका मध्य पाकिस्तान ले तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होवत बने है। एकर असर ले प्रदेश में काली एक दो जगह में अंधर चले के अवकाशीय बिजली गिरे के आशंका है। अब थोरकुन समाचार सार मा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा बताया है कि उत्तर पुस्तिका में पाए गए गलती के सत्यापन और ओखर पुनर्मूल्यांकन बर पोर्टल आज ले शुरू हो गए है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रही। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में काली मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हुई। बैठक में पाछू खरीफ विपणन बछर में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान के निष्पादन और कस्टम मिलिंग और अवैया खरीफ सीजन में धान खरीदी के तैयारी के बारे में चर्चा करेगी। रायपुर जिला के दिव्यांग युवा मंडला रोजगार ले जोड़े पर रोजगार कार्यालय रायपुर डहर ले 5 जून के बैरन बाजार के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। और कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल तीर पाछू संझा होए एक ठन सड़क हादसा में फटफटी में बैठे एक जन युवक के मौत हो गई। उन्हें एक जन दूसर युवक हा गंभीर रूप ले घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के हो ही मतगणना। यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कोंडापल्ली गांव पहुंचीन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करीन। और धमतरीहा देश के पहले ऐसा जिला बन गया हवे जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा दिवाए जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं निर्मल दास और साथियों की आवाज़ में सरगुजिहा लोकगीत।

अजित खेस और साथियों के गाए इस सादरी लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह का गाया ये गीत फिल्म गदर 2 से। बोल सईद कादरी के हैं, संगीत है मिथुन का।

अरिजीत सिंह के गाए इस खूबसूरत से गीत के बाद लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये प्यारा सा गीत। बोल है इंदिवर के संगीत MM करीम का और फिल्म है क्रिमिनल।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए नीति मोहन की आवाज में। गीतकार हैं मयूर पुरी, संगीत निर्देशक हैं हिमेश रेशमिया और फिल्म का नाम है किक।

0: नीति मोहन के गाए इस गीत के साथ ही आज की माधुरी बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।

0: नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
5: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
4: राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन चौपाल में प्राप्त सभी आवेदनों और समस्याओं का समय सीमा में निराकरण किया जाए। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम है।
6: कोई प्रमाण पत्र होगा, आय, जाति, निवास, ये सब, कोई आप लोगों का जमीन बारी का दस्तावेज चाहिए तो सब देने का काम करेंगे और आगे खेती बाड़ी को भी बढ़ाएंगे। इधर इमली महुआ सब बहुत है, उसका वैल्यू एडिशन करा के हमारे बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का काम, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये बकरी पालन, ये सब को बढ़ावा देंगे।
4: मुख्यमंत्री आत्मसमर्पित माओवादी दंपत्ति द्वारा संचालित किराना दुकान भी पहुंचे और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की सराहना की। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल पर ही कराई गई। इसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा यूपी

यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी।

0: भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में 10 पैक्स समितियों में ये सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन तकनीक से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय और कम लागत में किया जा सकेगा। इससे किसानों को आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित समारोह में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र को पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र द्वारा बीते वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधियों, नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रमों, किसानों और विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को देहरादून में होने वाले समारोह में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरा में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण चैंपियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इस विद्यालय का चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें विषय पर होने वाली इस प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। रायपुर के पास मंदिर हसौद स्थित मिवान स्टील लिमिटेड संयंत्र में आज सुबह भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही रायपुर तथा आसपास के क्षेत्रों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होते हुए बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेज हवा का गतिविधि लगभग 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है 4 जून से बढ़ने की संभावना है और अधिकतम तापमान में आज और कल में लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री का हल्की वृद्धि होने की संभावना है और तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है।
0: इस बीच आज दोपहर बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में अस्थि बाधित, बौने, कम सुनने और देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल के पास बीती शाम हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में जनजाति छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति

करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करा दें। रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत होगा रात्रि 9:15 पर। मनी टॉक और मंथन हम आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं कल यानी 3 जून 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। प्रातः 6:35 पर आप सुनिएगा गोस्वामी तुलसीकृत श्री रामचरित मानस का गायन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना हम आपको सुनवाएंगे सुबह 6:05 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु होगा प्रातः 6:30 पर और खेती की बात 6:45 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल हम लेकर आएंगे प्रातः 7 बजे और 7:15 पर आप सुनिएगा सुगम संगीत। नमस्कार सरगुजा जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म गीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीत वीर वंदन आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। प्रातः 9 बजे कार्यक्रम गांधी चर्चा हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। 9:15 पर होगा गुंजन और 10 बजे नए तराने। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर हाजिर होंगे दिन में 11:05 पर और दोपहर 12 बजे आप सुन सकेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शीर्षक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12:30 पर और घर गोसाइन आप सुनिएगा दोपहर 1:10 पर। इसमें कल सामयिक चर्चा का विषय होगा विश्व साइकिल दिवस और पर्यावरण संरक्षण। ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 पर और 2:30 पर गीत गंधा। शाम 5 बजे रोज ही की तरह आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और 5:05 पर गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या। 5:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। इसमें कल आप सुन सकेंगे गुलाब सिंह पैकरा और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी लोकगीत और सुखरंजन राम और साथियों की आवाज में सरगुजेहा लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी हम लेकर आएंगे।

शाम 6:30 पर। सुगम संगीत आप सुनिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा में शाम 7:05 पर। ग्रामीण भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा लखपति दीदी योजना, साइकिल स्वास्थ्य और पर्यावरण का साथी, विश्व साइकिल दिवस। आजकल में आप सुन सकेंगे धान का थरहा लगाने की उन्नत तकनीक और नैनो यूरिया का उपयोग। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम लेकर आएंगे रात्रि 8:00। 9:15 पर आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 पर रिले करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल की गूंज और 10:30 पर मन भावन। ये थी हमारे केंद्र से कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मिडवेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली का गाया ये गजल। गीत और संगीत भी है गुलाम अली का।

रजनीगंधा के अंत में आइए सुनते हैं मेहंदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल। लिखा है खुर्शीद हल्लौरी ने और संगीत से सजाया है ललित जैन ने।

मेहंदी हसन के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 होने वाले हैं। वक्त हो चला है ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल का।

0: अग्नु भैया राम राम।
1: राम राम परसु भैया।
0: अग्नु भैया, मौसम भी उतार चढ़ाव हम लगातार देखत हन और धीरे धीरे हमर खेती बाड़ी कर समय भी लीघे आते जाते हैं।
1: हो जैसे मौसम हरे दे बरखा पानी नहर करेल ना, तो किसान भाई मन भी अकबकाए जाते हैं कि कैसे करी खेत ल जोतवाई। कि मैं तो आज देखत रहे कि भाई सब गति ट्रैक्टर कूदत रही और बढ़िया बतर में पानी गिर गई से, तो किसान भाई में जो गर्मी की जोताई रहे तेला तो करत है, लेकिन खाद बिहन पर भी फिकराना शुरू करी ना है
0: और बढ़िया तैयारी हो जाए। लेकिन एक बात और रहे अग्नु भैया कि खेती बाड़ी बढ़िया हो जाए, मौसम भी अनुकूल रहे और हमार जितना सुविधा मिलना चाहिए वो सब भी समय पर मिले तो बढ़िया रहे, नहीं तो अचानक नुकसान तो किसान ला बड़ा नुकसान भी पहुँचे और बड़ा आघात भी लगे।
1: हाँ बाकी सब चीज़ पर तो योजना बनाल गई है। देखिए एगो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अगर कोई किसान ला कहीं नुकसान होते क्षति पहुँचता है फसल में, अचानक कोई आकस्मिक बरखा होगी, पानी बरसे लागिस, अंधर तूफान लागिस, चाहे कोई भी ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो किसान मन पर नुकसान तो रहे फसल कर, लेकिन ओकर बीमा अगर करवाई नहीं किसान मन तो ओकर लाभ भेटाई जाए।
0: बीमा करवात समय हमारा लगेल कि अरे कुछ नहीं हुई, लेकिन अचानक जब सिर के ऊपर पड़ेल ना अग्नु भैया, जब नुकसान रहेल तब किसान ला या कोई भी आदमी ला लगेल कि अगर मैं बीमा कराए रहते समय पर ध्यान दे रहते हैं तो आज मुला नुकसान कर भरपाई हो गए रहते।
1: और न सिर्फ प्राकृतिक आपदा बल्कि अगर कीट व्याधि कर भी प्रकोप पड़ता है, रोग खूब फैल गई है, नुकसान पहुंचता है, वो में भी किसान मन लेकर लाभ मिल सकता है।
0: मामूली जो प्रीमियम हमन के सरकार घोषित करी से है, जैसे हमन खरीफ फसल कर बात करथन जो आए वाला है, तो बीमित राशि कर 2% हमन के देना पड़े। रबी फसल में हमन जानत हन कि बीमित राशि कर 1.5% हमन के देना पड़ेल। वाणिज्यिक और बागवानी फसल में बढ़िया व्यवस्था है, 5% तक व्यवस्था है। तो ये सब हमन के मामूली प्रीमियम है, ये देह से कोई नुकसान भी नहीं है और हमन ला समय पर हमन के बीमा कर लाभ मिलेल।
1: हम देखते नहीं परसों भैया कि अचानक आंधी पानी आ जाए, मान लो बढ़िया धान कर खड़ा फसल है, दिक्कत है कि बड़ा बढ़िया दे इधर उत्पादन हुई, लेकिन वही घनी अगर कोई चक्रवात आएगी तो चक्रवात से पूरा धान हर जमीन में लौट जाए, खेत में लौट जाए, तो उस समय जो किसान वाला नुकसान पहुँचे ना ओकर भरपाई नहीं हो पाए। तो जो खड़ी फसल के दौरान जो नुकसान हुए, जैसे सूखा होगी, पानी नहीं बरसीस, मान लो बाढ़ आएगी, चाहे जल भराव ज़्यादा होगी, चक्रवात तूफान आएगी, ओलावृष्टि होगी और पहाड़ी क्षेत्र में मान लो भूस्खलन होगी, चाहे कीट रोग कर कोई प्रकोप होगी, वो समय ये हमन पर लाभकारी साबित होल।
0: बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एक एक चरण में हमन के बीमा कर लाभ मिले। और अग्नु भैया, अगर बुआई भी हमन नहीं कर पा रहे हैं, पर्याप्त अगर वर्षा नहीं हुई से प्राकृतिक कुछ कारण हो गई और हमन बोनी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमन के ओकर बीमा कर लाभ मिले।
1: अगर कोई फसल कर बीमा करता है नहीं तो कर बीमा कर करे के बाद मान लो फसल नुकसान पहुंचता है, तो किसान मल्ला प्रारंभिक सूचना देना पड़ी, बीमा कंपनी ल दें, कृषि विभाग ल दें, बैंक ल दें, चाहे कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC रहल वहाँ दें, चाहे राष्ट्रीय

0: फसल बीमा का जो पोर्टल है वहाँ दे सकता है।
1: मोबाइल के माध्यम से 72 घंटे के भीतर हमन की सूचना देना जरूरी है, और कटाई के बाद भी ये में व्यवस्था है कि भंडारण के समय, भंडारण से पहले अगर नुकसान हो गई से तो अब सूचना तो देहन, लेकिन कौन कौन सा हमन के प्रमाण पत्र जरूरी है ये भी बैंक अधिकारी मन बताते हैं, कृषि अधिकारी मन बताते हैं, तो हमन के खेत का फोटो भी लेना चाहिए। आजकल वीडियो सुविधा भी हमारे पास रहे तो वीडियो बना लेना चाहिए, खसरा नंबर रहे हमारे पास, फसल का जो विवरण है, हमन का फसल लगाए हैं, कौन फसल लगाए हैं, कितना एरिया में लगाए हैं, एक अलावा आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक कर हमन के सुरक्षित रखना चाहिए, और जो बीमा कराए हैं ना पॉलिसी नंबर, चाहे आवेदन कर जो नंबर है, आवेदन जो पत्र है, ओकर बारे में हमन के दस्तावेज तैयार करना चाहिए।
0: किसान भाई मन अगर सजग रहें तो कोई भी योजना का लाभ मिली और कोई भी फसल ला बुनत है तो पहले से तैयारी कर लें कि एकर बीमा हमला कराना है। ये मत सोचे कि हमारे टाइम नहीं मिलता है, कहाँ भी खोजे जाब, कहाँ जा कैसे करब, तो गांव में जो कृषि विस्तार अधिकारी रहते हैं उनसे संपर्क करें। अगर आसपास कोई सीएससी केंद्र है वहाँ चल जाएं, कृषि विभाग में चल जाएं, जो अपन लिंक बैंक है, चाहे सहकारी बैंक है, चाहे कोई भी बैंक से जहाँ से हम ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, वहाँ जाएं, संपर्क करें और ये मामला करवाई चले।
1: तो संबंधित विभाग के लोग मन नुकसान कर सत्यापन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, और ओकर हिसाब से मन देखते हैं कि हमला सही मुआवजा मिल पाही कि नहीं मिल पाही, तो ओकर हिसाब से योजना कर हमन के लाभ मिले। एक और योजना हमन जल्दी से बात कर लेती अग्नू भैया, जो हमन कथन कि अल्पसंख्यक कल्याण पर एक योजना है, प्रधानमंत्री जी कर महत्वपूर्ण योजना है, 15 सूत्री जो कार्यक्रम है ओकर लाभ हमन ला मिलत भी है, और 15 गोट सूत्र है अलग अलग जो हमन के योजना के रूप में सुविधा मिलल, ओकर बारे में योजना संचालित है।
0: तो नई रोशनी करी योजना है, एक जानकारी भी महिला मल्ला रखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के जो महिला मन है ओमन के नेतृत्व विकास पर, ओमन के सशक्तिकरण पर, ओमन कर विकास पर, ओमला आत्मनिर्भर बनाए कर जो ये में योजना है ओमला जानना जरूरी है। महिला मल्ला नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाए, ओमन का शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ जाए, कानूनी अधिकार ओमला मिल जाए, बैंक चाहे वित्तीय साक्षरता ओमला ओकर ज्ञान हो जाए, चाहे आजकल डिजिटल साक्षरता जो है ओकर भी जानकारी ओमला मिलना जरूरी है योजना के तहत।
1: कई ठो प्रशिक्षण में देहल जाए, जैसे महिला अधिकार कानून के बारे में ओमला जानकारी देहल जाए, स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा कर महत्व बताल जाते, बैंकिंग और बचत के बारे में ओमला बताल जाते, डिजिटल भुगतान ओमन कैसे कर सकते हैं, सरकारी योजना मन कर लाभ कैसे ले सकते हैं, स्वरोजगार और उद्यमिता के बारे में ओमला कितना जानकारी है, नेतृत्व कौशल ओमन कैसे विकसित कर सकते हैं, एकर बारे में ओमला पर्याप्त रूप से समय समय पर प्रशिक्षण देहल जाए।
0: परसों भी योजना का प्रभाव यह है कि नई रोशनी योजना जो है प्रधानमंत्री को जो 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत यहाँ शामिल है, तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो 15 सूत्री योजना है जो कार्यक्रम चलता है उसमें अल्पसंख्यक कल्याण कर कई गो गोट है। बच्चा वाला छात्रवृत्ति देकर योजना है, अगर कोई कमजोर परिवार का बच्चा है वाला बाहर विदेश तक भेजे कर व्यवस्था है कि विदेश अगर जाना चाहता है कुछ पैसा नहीं है तो मदद मिली। जो अल्पसंख्यक कल्याण के तहत जो बस्ती मना है जहाँ ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं वहाँ वेंडर की व्यवस्था, वहाँ लाइटिंग कर व्यवस्था, वहाँ पे सड़क बिजली पानी जो जायद कर व्यवस्था है, वो मतलब कंप्यूटर का प्रशिक्षण कर देकर व्यवस्था, तो ओकरे तहत ये जो नई रोशनी योजना हम गोइट कर रहे थे, इमें जो हजारों महिला मन है ओमला प्रशिक्षण देख के ओमला आत्मविश्वास मन को बढ़ाल जाता है, ओमला जागरूक करल जाता है, आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है, तो ये योजना हर बड़ा बढ़िया है।
1: कितना बढ़िया नाम दहल गई से अग्नु भैया, नवा रोशनी, नई रोशनी जला कर, तो महिला सशक्त रही, मजबूत रही, पढ़ल लिखल रही और सब चीज़ कर ओला जानकारी रही, तो परिवार कर बढ़ाए में भी वो मदद करेल, परिवार कर सुरक्षा भी करेल और परिवार बहुत मजबूत हो जाए। तो एकर योजना के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। एक तो मैं देखत रहन कि जो भारत सरकार कर जो minorityaffairs.gov.in ये एला लिख ही ना मोबाइल में, क्रोम में जा कर के, तो तो ये सीधे वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो ये पोर्टल है वहाँ पर जा करके हमला खुल जाइए और वहाँ पर पूरा एक एक क्लिक में हमला मिल जाइए, कहाँ आवेदन हमन कर सकते हैं, कैसे छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं, हमारा आवेदन कर का स्थिति है, कैसे स्थिति है। तो बस minorityaffairs.gov.in लिखना पड़ी तो हमला वहाँ से पूरा जानकारी हमन के मिले।
0: परसों भी हम बार बार कहते रहते कि देखा योजना बहुत सारा बनल गई से, भारत सरकार कई गो योजना बनाई से किसान मन

0: और महिला मन पर युवा मन पर, लेकिन हम कहाँ जो पिछुआ जाती हमारे जानकारी के अभाव में, तो हमें घर से निकलना पड़ी, अपन जो गांव कर पंचायत भवन है वहाँ चल जाएं, चाहे वो जो भी सुविधा केंद्र है वहाँ चल जाएं, तो जानकारी जहाँ से मिले, जो अधिकारी से मिले, सब जन बैठी ना है, लेकिन हमें खुद जागरूक होना पड़ी, हमें आगे बढ़ना पड़ी, घर बैठे कोई जानकारी हर नहीं भेटा है।
1: एक तो मोबाइल है अग्नु भैया, मोबाइल में बहुत बढ़िया आजकल सुविधा, और AI के माध्यम से तो और ज्यादा सुविधा आजकल बढ़ गई, तो AI का उपयोग करना सीखें, वहां से कैसे आवेदन के बारे में सब चीज जानकारी मिले। एकर अलावा जो CSC रहल गांव गांव में, अब CSC खुल गई, से वहां जाकर के जो बैठे रहते हैं वहां पर जाके समस्या बताएं, कैसे आवेदन करना है, का लेना है, आवेदन कर का स्थिति है, सबके बारे में वहां से जानकारी मिले। तो बात बहुत कर ले हैं अग्नु भैया, और अब बेरा हो गई से हमारे प्रायोजित कार्यक्रम कर, कार्यक्रम है किसान वाणी और ठीक 7:30 बजे वाला है, तो कार्यक्रम ला सुना थी
0: चला।

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मो सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन और ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमन सुनत हन हलो किसानवाणी कार्यक्रम। और हलो किसानवाणी कार्यक्रम सब जन जानते हैं अग्नु भैया कि हमन आजकल सजीव करथन लाइव करथन सीधे स्टूडियो से और सीधे बातचीत करथन और जो विषय है जो हमारे साथ विशेषज्ञ रथ हैं उनकर से बातचीत भी करथन और फोन कर भी हमन इंतजार करथन। तो हमारे साथ में आज एक विशेष मेहमान है और पहुँच गई हैं, काफ़ी समय से पहले पहुँच गए रहन, तो इनके बारे में बताते हैं राहुल रघु भैया।
3: परसों भैया देखा, आज बड़ा अच्छा मौका है, अभी खाद बिहन कर जरूरत है किसान मल्ला।
2: हाँ।
3: सब किसान मन जब बैंक कति जाते हैं तो बीज कति जाते हैं तो खाद खो जाते हैं, तो ये पूरा तैयारी कर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं।
2: हाँ।
3: चार गो हमकर जो जिला है ओकर मुखिया हैं और सहकारी जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित है ओकर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिला हमारे सीओ भी कथी नहीं वो हैं श्रीकांत चंद्राकर जी, वो हमारे स्टूडियो में आके बैठी ना है, इनकर से ढेर गोट बात हुई।
2: बहुत बढ़िया मौका है और श्रीकांत जी चंद्राकर जी राउर के बहुत बहुत स्वागत करती है हमारे कार्यक्रम में।
4: आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: और राहुल कैसा लगा थी स्टूडियो में, हमन सीधे अब जुड़ गए हैं हमारे सुनोइया भैया बहनी मन से।
4: बहुत बढ़िया लगा थे, सीधा किसान मन के साथ जुड़ना है तो बहुत अच्छा हवा है हमारे बात।
2: और अग्नु भैया देखे छत्तीसगढ़िया में बात कर रहे थे और सरगुजिया में बात कर रहे थे तो बड़ा आश्चर्यजनक बात हो गई इसकी, तो बहुत बढ़िया लगा था।
3: हाँ भाई देखा एक रोट अधिकारी अगर लोकल भाषा में स्थानीय बोली में अगर बोलते नहीं तो जी और बढ़िया लगे।
2: हाँ,
3: किसान भाई मन जो घर से जुड़ाव भी रहते हैं तो हम जब तो कई को देखा कृषि वैज्ञानिक मन भी आते रहते हैं और अलग अलग विभाग के अधिकारी मन आते रहते हैं। बाकी अगर आज हम कोई बैंक कर जिम्मेदार अधिकारी बुलाए ही तो ये समय हर भी अनुकूल है।
2: एकदम सही समय है और धीरे धीरे जैसी खरीफ पर बुआई कर समय शुरू हो जाए, थरहा लगाए कर समय शुरू हो जाए तो किसान मन हमन तो देखथन कि थोड़ा सा खाद बीज पर परेशान रहते हैं। चंद्राकर जी हमला बताइए कि समिति के माध्यम से ए धार खरीफ सीजन पर कैसन तैयारी है, का व्यवस्था राहुल करे?
5: छत्तीसगढ़ शासन है खरीफ सीजन पर बहुत अच्छा तैयारी कराए हवा। पूरा जिला हमर जे में चार जिला आते ओ चारों जिला में लगभग 96,000 टन के हमर खाद भंडारण के व्यवस्था दिए हवे, जिमा 56,000 टन के भंडारण हमन कर डाले हवन सभी समिति में। 133 सहकारी समिति हवे और सभी में हमन यूरिया सुपरफास्फेट इफको डीएपी पोटास जिंक और दूसर खाद भी हवे सब भंडारण करके बैठे हवन। बस किसान मन आ जावे हमर साथ में और वहाँ से खाद लेके चल देवे और जल्दी आही तो जल्दी पाही तो फिर हमन भंडारण कर लेबो और समय समय पर उमल उपलब्ध होत रही।
2: और समिति के माध्यम से किसान मन जाही तो कोई मुश्किल अगर परेशानी आई तो वो मन का कर सकते हैं? कई बार मिले में देरी हो जाएल, कई बार लंबा लाइन हो जाएल और कई बार लगेल कि हमर पास जितना हमन के जो मिलना चाहिए वो में जो मात्रा निर्धारित है वो में से कम मिल पा रेल कभी कभी।
5: छत्तीसगढ़ शासन एकरे बा 15 फरवरी से ही व्यवस्था करके रखे रही थे कि जतका भी खाद हावे हमारे सहकारी समिति में भंडारण करा लेवे। हमारे यहाँ लगभग 48,000 मेट्रिक टन के भंडारण क्षमता हावे जेमा हमन खाद ले भंडारण कर देथन। किसान मन आवे और जल्दी जल्दी ले जावे, उपयोग करे फिर ले जावे। एकरे बा प्रारंभिक व्यवस्था मुमल दे दिए जाते पूरा।

0: सीजन भर में लगभग 96,000 टन के आसपास के हमन भंडारण करबो जेकर पूरा वितरण हो जाही। अगर कोनो प्रकार के परेशानी होते तो सीधा हमारे यहाँ प्रधान कार्यालय में शाखा में या उप संचालक कृषि ले सूचना दे सकता।
1: फोन आई से मुला लगत है चंद्राकर जी। हेलो
2: हेलो भैया, हेलो किसान वाणी से बोला था।
1: हाँ, किसान वाणी कार्यक्रम में राउर के बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई।
2: भैया देखिए, आज मोर सवाल है।
1: परिचय बताइए, अपन नाम बताइए।
2: मोर नाम राम साहब, मैं तोलगा उदयपुर ले बोलत हूँ।
1: हाँ,
2: वो सवाल ये है कि भाई, जे किसान क्रेडिट कार्ड होते ना तो हमें कितना लोन ले सकत है, और जैसे मान लीजिए समय से नहीं पटा पाई तो कितना ब्याज ओकर जोड़ से सरकार है।
0: छत्तीसगढ़ शासन हा ओमा ये व्यवस्था दिए है कि अगर आप मन टाइम में लोन लेके पटा देत हवा तो एक भी ब्याज नहीं लगे, लेकिन अगर आप मन समय के अवधि में नहीं पटा पात हो तो ओमा 3% एक्स्ट्रा मतलब लगभग 12.5% या 13% के आसपास आपला ब्याज लगी, जिला दंड ब्याज भी बोल देते हमन।
1: रामसे जी, और कोई सवाल है? खाद बीज के बारे में कुछ नहीं पूछे के?
2: नहीं, एक तो सवाल है सर कि इधर एक एकड़ में खाली दुई बोरिया देता है तो मन पांचों साल से तो कम खाद तो मिलत है साल स्टिक में।
0: एमा छत्तीसगढ़ शासन ने व्यवस्था दिए हवे, काहे कि वैश्विक जो अभी घटना घटत हवे जेमा युद्ध होत हवे उकर कारण बाहर देश से आने वाला जो हमर खाद हवे ते कम आत हवे, तो सब किसान लोग मिल जाए एकर बा थोड़ थोड़ सब ला उपलब्ध कराए के हिसाब से थोड़ा मात्रा ला कम कर दिए गए हैं, और जैसे जैसे हमार ला व्यवस्था हो जाही आप हमला उपलब्ध कराबो। एमा इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीओपी भी हवे जो बॉटल में मिला थे तेकरो अपन उपयोग कर सका था। एकर संबंध में आप माँ जो हमार क्षेत्र में जो वो होते ना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिला ग्राम सेवक या ग्राम सहायक बोलथन उकर मार्गदर्शन से आप मन ओला उपयोग भी कर सकत हवे।
1: रामसाह जी, और कोई सवाल है?
2: सवाल तो ही है सर, तो कैसे में खेती होई?
0: ओमा आपन एक बार प्रयास करो तो जरूर हो ही। ओमा जैसे नील हरित सवाल हवा है और हमार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी दूसर प्रकार के ना सवाल उपलब्ध कराते ताकि जो आप मन रासायनिक खाद उपयोग करा था ना धीरे धीरे कम हो जाए। प्रयास करहु, काहे कि लगातार रासायनिक खाद के उपयोग करे से हमार जमीन खराब होता हुआ है और आप मन जो उपज पैदा कर रहा था वह स्वास्थ्य पर ठीक नहीं हवा है, तो धीरे धीरे आप मन अगर बायोकेमिकल पा जाओ या फिर जो हमार जो खातु के उपयोग करते हमन जो वाला नहीं था जैविक खातु तो कर उपयोग करे से भी आपके स्वास्थ्य पे भी उचित प्रभाव पड़ी और निगेटिविटी भी नहीं रही। ओमा आप मन प्रयास करो, पहली पैत में परेशानी होते लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से उकर फायदा आप मन ला मिल ही।
1: रामसाह जी ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हन अगनु भैया।
3: हाँ, परसों भैया देखा बड़ा बढ़िया जानकारी मिलत है और खाद उद का जानकारी भेटाएल तो किसान भाई मन भी लागल कि बड़ा अच्छा जानकारी भेटात है, कहीं जाना नहीं पड़ी, बैठे बैठे जानकारी मिलत है। श्रीकांत चंद्राकर जी राउर से एक सवाल हो हम करब, लेकिन लगता है कि एगो फोन आएगी से ये ले लेती। हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी।
3: हाँ, कहाँ से बोले थे रौरे?
4: मैं धवरपुर से बोल रहे हैं।
3: हाँ, का नाम है रौर?
4: मोर नाम तुषार पांडे है।
3: हाँ तुषार पांडे जी, और तो फोन करते रहती, बताइए क्या समस्या है? आज देखा हमन सहकारी बैंक के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं श्रीकांत चंद्राकर जी बुलाए ही और खाद और केसीसी के बारे में जानकारी देते हैं, तो क्या पूछना चाहती रोरे?
4: मैं ये पूछना चाहत रहे कि मुझे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना रहे तो ऊपर क्या करना पड़ेगी?
0: ओमा आप मन एक काम करियो, पहली समिति में चल दू, ओमा आवेदन बना लूँ अपन तरफ से और 105 रुपया जमा करे पड़ते, दू ठन फोटो, आधार कार्ड, अपन नक्शा खसरा हो गए, B1 हो गए और ऋण पुस्तिका के एक ठन कॉपी भर दे देवा, तो बाकी आपके किसान क्रेडिट कार्ड बने के पूरा तैयारी हो जाही। फिर हमार समिति वाले मन बाकी के काम ला करी और 7 से 10 दिन के भीतर आपला पहला लोन मिल जाही। अभी समिति में सब प्रकार के खाद उपलब्ध हवे, आप जाके एक बार समिति में चेक कर लेवा, वहाँ पर आप ला यूरिया, DAP, NPK, सुपर फास्फेट सब मिल जाही। आप एक बार चल देवा वहाँ पे, वो सब मिल जाही, हमार समिति वाला सब आप ला बता दी ही।
3: हाँ तो रौरेकर सवाल का जवाब तो भेटाएगी सो ही, और कहीं सवाल है रौरेकर?
4: नहीं, कोई सवाल नहीं।
3: चला, और फोन करें राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खरीफ से पहले इतना महत्वपूर्ण जानकारी अगर मिलत है अग्नो भैया तो बहुत अच्छा बात है। किसान मन ला ये मौका कर फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो कई बार हमन परेशानी में

0: तनख्वाह मिली, कब मिली, स्टॉक खत्म हो गई से तो कब आई, सबके बारे में जानकारी किसान मन हो चाहिए।
1: परसों भैया हम देखते कि जैसे कई गो ऐसा पोषक तत्व है जेहर सहकारी समिति में नहीं भेटा है, जैसे नाइट्रोजन होगी यूरिया के रूप में मिलाता है, सुपर फास्फेट भेटा आता है, पोटास भी मिल जाए, बाकी और भी कुछ कुछ ऐसा हमला जरूरत पड़े धान पर जैसे जिंक होगी तो रोरे बताते हैं मुकार्पण अधिकारी महोदय कि जिंक हर उपलब्ध है कि नहीं।
2: हमारे यहाँ सहकारी समिति में जिंक भी उपलब्ध हावे, लगभग 12 टन के आसपास सरगुजा जिला में हावे, बलरामपुर में 37 टन हावे, 100 टन सूरजपुर में हावे, कोरिया में 18 टन हावे, इस प्रकार 158 टन खाद हमारे जिंक के रूप में सहकारी समिति में उपलब्ध हावे।
1: रोले रोकूं एक वाव किसान का फोन आएगी से। हेलो किसानवाणी,
3: किसानवाणी से बोल,
1: हाँ हेलो किसानवाणी से बोल थी रोले, अपना नाम लो बताइए। कहाँ ले बोला थे रोरे?
3: अंबिकापुर से ही बोल रहा हूँ, शहर से ही।
1: तो रावरू का खेती, रावरू का खेती पाती कहाँ है?
3: ये बिलासपुर रोड में है, भिट्टी के पास।
1: तो धान उनका तैयारी करा थी?
3: हाँ धान की तैयारी ही तो करा थी, लेकिन वो कहा कि एक ओकरे से जुड़ल सवाल रही, कहा कि किसान वाड़ी में भाई आते हैं जानकार मन, तो सोची कि वो सवाल पूछ ली तो कुछ हम वाला जानकारी मिल जाए।
1: हाँ तो लगे पूछे।
3: हाँ भाई मोर सवाल ये रहिस कि केसीसी यार कैसे बने पहला, और वही में लगल सवाल ये रहिस कि केसीसी में बने लोकर बाद कितना खाद में मिले और राशि कितना मिले और कौन कौन प्रकार के खाद मतलब हमला उपलब्ध मिल जाएगी ताकि बढ़िया से खेती का पाती हो जाए अपन धान उनके।
2: ओमे ना आप एक काम करूँ, आपके जो निकटतम समिति हावे जहाँ आपके जमीन हावे वहाँ के समिति प्रबंधक से मिल लो, वहाँ दो ठो का आपला फोटो देना है, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, कोनो बैंक में खाता हो गए हो ही तो वहाँ खाता क्रमांक देना है, B1 नक्शा खसरा दे देना, आप अपन डिटेल ल दे दूँ। अच्छा एकर बाद 105 रुपया के आवेदन दे दूँ आप मन तो आपके किसान क्रेडिट कार्ड बन जाही। अब बेमा ये है कि आपके आपके जो जमीन हावे सिंचित हावे या असिंचित हावे, तो अगर सिंचित हावे तो 55,000 रुपया हेक्टेयर मिल जाही, असिंचित हावे तो 44,000 हेक्टेयर मिल जाही। अभी हमारे यहाँ सहकारी समिति में सब प्रकार के खाद उपलब्ध हावे, अभी यूरिया हावे, सुपर फास्फेट है, इफ्को है, DAP है, पोटास, जिंक और दूसर खाद भी हावे ते मन उपलब्ध है, आप बस समिति चल दूँ तो वहाँ आपला पता चल जाही कतेक कतेक आपला मिल सकत हावे।
3: धन्यवाद सर आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। रघुकर
0: एक और फोन आई से चंद्राकर जी। हेलो किसान भाई रावर के बहुत बहुत स्वागत कर थी। हेलो
4: हाँ हेलो,
0: हाँ अपन नाम बताइए किसान भाई।
4: ए बिंदर सिंह,
0: कहाँ से बोल थी?
4: ए शंकरपुर जो इधर लखनपुर साइड में नहीं होता है, उदयपुर शंकरपुर।
0: अच्छा अपन सवाल बताइए।
4: किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेना रही।
0: अच्छा अभी तक ये सुविधा का लाभ नहीं ले है?
4: हाँ नहीं नहीं नहीं को बात।
0: अच्छा ठीक है, हमारे साथ में चंद्राकर जी हैं।
4: एक और सवाल रही कि अभी यूरिया खाद कम मिला था, एकदम कम से कम।
0: कम मिला था?
4: हाँ।
0: अच्छा
2: सिंह भैया एक काम करूँ, आप मन आपके जहाँ जमीन हावे ना ओकर पास वाला जो समिति हावे वहाँ चल दूँ और वहाँ फिर 2 फोटो डाल दूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं खाता वाता खोल लिए हो तो वो खाता की कॉपी लगा दूँ और नक्शा खसरा B1 ठीक है वो दे दूँ तो आपके किसान क्रेडिट कार्ड बन जाए। अभी सब समिति में ना यूरिया के खाद हावे, अगर आपके समिति में नहीं हावे ना तो एक बार आप मन प्रधान कार्यालय या कोनो लभी ब्रांच मेजर लभी बता दूँ तो आप लोग व्यवस्था करा दिए जाही वहाँ पे समिति में। बाकी पर्याप्त मात्रा में अभी यूरिया हावे जिला में, आप मन ल मिल जाही।
4: सर एक सवाल और रही
2: जी,
4: अरे पटवारी जो अभी बहुत दिन से दौड़ते हैं ना तो
2: भैया, वो मैं काम करूँ आपके जो निकटतम वो हावे ना तहसील कार्यालय वहाँ जाके सूचना दे दो तो मन पटवारी ला भेज के पूरा काम ला करा दे ही, बाकी राजस्व विभाग आपके बहुत मदद कर ही।
4: ठीक है सर।
0: ठीक है बिंदे जी, और कोई सवाल तो नहीं है?
4: नहीं सर।
0: फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद करती।
1: परसों भी देखा लगातार फोन आते हैं और हम बातचीत भी करत हैं और हमने एक चीज देखे कि किसान भाई हम बड़ा जागरूक हैं और कुछ कुछ व्यक्तिगत समस्या वाला भी बताते
0: हैं।
1: बाकी समस्या है तो बतावे करी, सक्षम अधिकारी में निराकरण भी करी, लेकिन काम हर तो हुई जाए।

0: काम तो होल और एक फोन और आई से मुझे लगत है इशारा होता है तो थोड़ा झोंक लेती फोन। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: आवाज तो नहीं पहुंचता है। हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
0: हाँ मुझे लगा था या तो कट गई से या ना कुछ नेटवर्क में समस्या है जी। तो
1: हेलो
0: अग्नु भैया कुछ सवाल पूछते रहे हैं।
3: हाँ हम पूछना चाहते हैं कि देखा खाद भी खाद कर तो हम गोट करते ही लेकिन हम देखते हैं कि एक चीज़ रहल किसान भाई उन कभी भी चाहते हैं कि हमारा जो नगद राशि है वह ज़्यादा मिल जाए और खाद कम मिले तो बाकी जो मजदूरी भी वही में उनकर काम का व्यवस्था हो जाए रुपाई में व्यवस्था हो जाए तो नगद राशि और खाद कर का अनुपात है कितना कितना बैंक से मिले।
2: पिछले साल तक छत्तीसगढ़ शासन ने निर्धारित करे जिसे कि 60% नगद हो जातीस और 40% आपके खाद हो जातीस। ये बार नया व्यवस्था दी है छत्तीसगढ़ शासन कि अब 70% आप मन नगद ले सकत हो और 30% खाद बीज ले सकत हो। मतलब सामान्य रूप से समझा जाए तो पहले 1,00,000 रुपया में 60,000 नगद मिलती और 40 के खाद ले लेती। अभी ये हो गया कि 70,000 नगद ले सकत हावे और 30% या 30,000 रुपया आप मन खाद बीज के रूप में ले सकत हावे तो 10,000 एक्स्ट्रा की सुविधा दिलवाए हावे छत्तीसगढ़ शासन है।
3: हम देखते हैं कि किसान भाई मन जो ये तो अल्प अवधि का ऋण होल तो कितना दिन का ऋण रहेल कितना ब्याज लगेल और किसान मन कितना एकर अतिरिक्त भार भी पड़ेल का।
2: इसमें छत्तीसगढ़ शासन है बिल्कुल कोई भार किसान ले नहीं दिए हावे। छत्तीसगढ़ है किसान हित ऐसी सरकार हावे। इसमें कुल मिला के कहा जाए कि अगर आप मन निर्धारित अवधि में जैसे 6 महीना या 1 साल के भीतर में 15 मार्च के पहले अगर आप मन पटा देता हो तो 1 रुपया भी ब्याज आप लोग नहीं लगे। और इसमें 2 सीजन में मिलते एक तो खरीफ के सीजन में दूसरा रबी के सीजन में तो बिल्कुल किसान मन मुक्त हवे ऋण मुक्त अगर उमन डिफाल्टर नहीं हवे तो।
0: बढ़िया जानकारी हमन के भेटा थे अग्नु भैया और चंद्राकर जी भी बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। एक संदेश ना सुन लेती हूँ बाद में फिर
3: सुन ले।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हमन बातचीत करत रहन और हमर कार्यक्रम अब सीधे लाइव हमन जुड़ गए हन और हमन बात करत रहन खाद बीज कर वितरण कर व्यवस्था और उकर संबंधित जो समस्या है उकर बारे में बातचीत करत रहन। चंद्राकर जी, हमला बताई कुछ जो ऑनलाइन एकर व्यवस्था है एमे कुछ निगरानी कर भी पर्याप्त व्यवस्था है, कुछ कहीं से अगर जिला सही नहीं मिलत है या जिला ज़्यादा मिल गई से एकर संबंध में कुछ जैसे निगरानी व्यवस्था है?
7: एमे निगरानी व्यवस्था ये दिए गए है कि आपके सबसे पहले अगर परेशानी आता है तो आप अपन शाखा में सूचना दे सकत हो, नहीं है तो जिला कार्यालय आपके कलेक्ट्रेट में दे सकत हो, आपके ACDO होते ना जो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हो गए हवे, सहायक संचालक कृषि हवे, वहाँ आप सूचना दे सकत हो, उसका निराकरण हमन तत्काल कर देथन। और RBI भी एकर व्यवस्था दे के रखे, निवारण पोर्टल में आप मन शिकायत कर दो तो भी हमन सुधार और सहयोग करबो, NABARD में आप शिकायत कर दो तो भी हमन सुधार और शिकायत के निराकरण कर देथन। तो सब प्रकार से व्यवस्था किसान भाई मन लगे।
6: फोन आई से चंद्राकर जी, पहले फोन झोंक लेती। हेलो,
8: हेलो, किसान वाणी
6: कार्यक्रम में किसान भाई बहुत बहुत स्वागत करत हन राउर के।
8: हाँ भैया, राम राम। मोर डहर ले चंद्राकर साहब ला भी मोर डहर ले राम राम। भैया
6: सुनत है राउर की आवाज ला सुनत
8: है। हाँ, मैं मानिक राम प्रजापति बोलत हूँ भैया, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ले।
6: मानिक जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बताइए।
8: हाँ, धन्यवाद भैया। मोर सवाल रही से भैया, महू आज ये जो बढ़िया सुंदर जानकारी पर विषय रखल गई से भैया, मोर जानकारी मैं ये चाहत रहन कि सोसाइटी से हमन खाद तो लेहत रहन पहले।
6: हाँ।
8: लेकिन मैं ओमे ऋण भी लेना चाहता हूँ, जैसे लोन भी लेना चाहता हूँ।

0: मोर जमीन के माध्यम से जैसे 1 लाख रुपया का बना थे ओकर लिमिट बन जाते, तो मैं कितना के खाद दे सकते थे और कितना मैं पैसा दे सकते थे, ये जानकारी मैं चाहत रहे
1: भैया। बहुत बढ़िया आपके सवाल हावे, ओमा मैं आप लोग बताना चाहा था वो कि जैसे 1 लाख की आपके लिमिट बना था वे ना, तो आप 70,000 रुपया तक के ना आप नगद ले सका था वो शाखा में जाके, और 30,000 के आप खाद बीज ले लो, तो सीधा आप अपन समिति से पहले जाके मिल लो, लिमिट कतका बना थे पता कर लो, और पता करे के बाद फिर आप लोग मिल जाइए वो पैसा, आप सीधा शाखा में चल दो, वो शाखा में जाओ तो आप वो पैसा ला आप ATM के माध्यम से भी निकाल सका था वो, और नगद भी आप निकाल सका था वो।
2: और कोई सवाल जी?
0: एक और सवाल रही से भैया, जैसे पंजीयन में कराए रहे हो एक खाता के, तो अभी खाता जो पंजीयन करवाया वो बोले लिमिट बनवाए वो, तो बोली से कि धान में चाहिए उस समय में बनवावे, तो जब अभी लिमिट नहीं बनी से तो खाद भी तो नहीं मिल सकते थे भैया वो पूरा जमीन के आधार पे।
1: नहीं ऐसे कोई परेशानी तो नहीं हावे उमा, एक बार आप देख लो कि आपे के जमीन पे करा थो कि भाई भी हावे उमा संयुक्त खातेदार, एक बार पता
0: तो
1: करा लो।
0: संयुक्त खाता हवे भैया, लेकिन एमे कोनो आपत्ति नहीं हवे कोनो ला।
1: नहीं हाँ वो तो बढ़िया, आप लिमिट बनवा लो, बाद वाला कोई बातें नहीं है, अभी ले करा लो। अच्छा आपके एग्री स्टेक में पंजीयन हो गए हवे का?
0: हाँ एग्री स्टेक में तो सब जमीन के पंजीयन हो गए है भैया।
1: हाँ तो फिर कोई परेशानी च नहीं है, तो फिर बढ़िया जाके आप मन लोन लेवा और खातू माटी आप मन ले और बढ़िया खेती वेती करो, धान बेचे के टाइम मस्त धान बेचो।
0: अच्छा तो मैं एक जमीन के नंबर हवे भैया ओला पंजीयन करवा डाले हूँ और लिमिट भी बन गए है, तो दूसरा जमीन के अभी हो सकत है का?
1: दूसरा जमीन आपके ही नाम पे है कि कोई दूसरा भाई के नाम पे हवे?
0: नहीं मोरे नाम पे है भैया, ओमे साझेदारी भी हवे
1: भैया, ओमे ना पंजीयन एक ही हो ही, अलग अलग पंजीयन नहीं हो सके, तो अच्छा। एक साथ ऐड करे भाई, एक काम कर दूहू ओमा, आपके जो पटवारी हावे और जो आपके जो ग्राम सेवक हावे ना कृषि विभाग के, ओकर से संपर्क करके जोड़वा ले तो हो जा।
0: अच्छा अच्छा
1: जी भैया।
0: हाँ हाँ भैया बहुत बढ़िया जानकारी दे भैया, आप मल्ला भी मोडल बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है मानिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर थी।
0: हाँ धन्यवाद
2: भैया। हेलो हेलो हाँ
3: सर नमस्ते।
2: नमस्कार किसान भाई, राउर के नाम बताइए।
3: गांव नाव पर खोद से बोल रहा हूँ सर।
2: अच्छा एक बार नाम बताइए फिर से।
3: रुकने दें।
2: अच्छा सवाल बताइए अपन।
3: सर खाद तो बहुत कम मिल रहा है सर, इंसाल और मक्का उक्का बोते हैं हम लोग, तो कैसे होगा सर?
2: कितना खाद मिली सर और कितना मिला था अभी?
3: मतलब 1 एकड़ में हम अपने पास 3 एकड़ है, तो 3 बोरा मिला है खाद और 3 बोरा यूरिया।
2: चंद्राकर जी तो सुनते हैं बताइए।
1: भैया उसमें ना एक काम करो आप कि सबसे पहले तो आप मन जो लोन ले था वो ना वो मैं आपके पात्रता के हिसाब से जो कृषि वैज्ञानिक मन निर्धारित करे है वही खाद आप ला मिला था वह, लेकिन जो आप ला अतिरिक्त 70% के जो आप ला वो मिले हैं ना नगद, तो नगद में से भी आप बाहरी दुकान से खरीद सका था वो, क्योंकि वैश्विक जो युद्ध के परेशानी चला था वह ओकर कारण से जो बाहर देश से जो हमला खाद मिलत रही से ओमा परेशानी होता वह, एकरे कारण सब किसान ला सुविधा मिला है, और लघु सीमांत किसान हावे बड़े किसान हावे सब ल खाद की सुविधा मिला, इला ध्यान में रख के भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ये खाद की व्यवस्था कराए हावे भैया, एमा आपके सहयोग लगी और दूसर किसान भाई ला भी सहयोग करना चाहिए। एमा आप ला बॉटल में आपका जो यूरिया के हावे ना जो इफ्को के नैनो DAP नैनो यूरिया हावे वह व्यवस्था आप ला दिए गए, वह आप लेके उकर आप अपन खेती कर सका था वो।
3: मतलब सोसाइटी से और नहीं मिलेगा सर?
1: भैया जो वहाँ पे जो दिया गया है कृषि वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित किया है उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि POS के माध्यम से आपको उपलब्ध कराना है, अगर आप प्रयास भी करेंगे तो वो आपको ना अलाउ नहीं करेगा, वो आपको लेने नहीं देगा, तो सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिसका मॉनिटरिंग भारत सरकार करता है। जी भैया
2: और कोई सवाल है राहुल के?
3: और कोई सवाल नहीं सर, सिर्फ खाद का परेशानी है सर। कमी पड़ रहा है सर।
2: अच्छा ठीक है, तो राउर फोन करें और बढ़िया लगी समझ ला, बहुत बहुत धन्यवाद कर थी।
4: परसों भी देखा लगातार फोन मनात रही और सबकर अलग अलग समस्या भी है, पर निराकरण भी होत रही, और हमने एक चीज जानना चाहती कि अभी नैनो यूरिया कर वोट करी, तो नैनो यूरिया जो है जैसे हम प्रति एकड़ जितना बोरी यूरिया ला डालती है, तो नैनो यूरिया कितना लगी प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई मन का मानक तय कर लगी से होकर?

0: एक एकड़ पे एक अभी बताए गए हावे एक बॉटल एक्चुअल में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी हावे वो नया एक प्रचलन के चीज हावे जे अभी बहुत ज्यादा किसान मन नहीं जाना था वे
1: मुला लगा थे कि परेशान भी हैं तो एक बारे में रुझान बढ़ी तो समस्या का समाधान भी हो सके
0: निश्चित रूप से कर फायदा मिली। अभी इफको ला ये व्यवस्था दिए गए इफको क्रिप्को ला तो इफको क्रिप्को जो कंपनी हावे वो भी सहकारी क्षेत्र के कंपनी है अब वो है ये दोनों ला बॉटल में बना था वे सहकारी समिति में उपलब्ध कराए बा चालू कर दिए है। एमा कतेक कौन सा फसल बा कतेक कतेक उपयोग किए जाना है जो स्थानीय आपके जो ग्राम सेवक या ग्राम सहायक हावे वो बहुत अच्छा से बताए ताकि किसी प्रकार के फसल ला कोई नुकसान भी ना हो कर व्यवस्था भी पूरा हो जाए। तो निकटता में आपके जो भी हो ही आपके गाँव से जुड़े हुए ग्रामीण सेवा विस्तार अधिकारी हो ही उकर से संपर्क कर सकत है और वहाँ से फिर जो भी उमन रिकमेंड कर ही उकर हिसाब से ओला उपयोग किया जाए तो ज्यादा उचित रहे।
2: चंद्राकर साहब राउरकर जो क्षेत्र है कार्य क्षेत्र है उसमें कोरिया जिला आयल और बलरामपुर जिला आयल सूरजपुर जिला आयल सरगुजा जिला आयल इस चारों जिला में कितना किसान लगभग हुए कितना जन सहकारी बैंक लाभ देता है कितना क्रेडिट देते हैं

0: अब वो है ये दोनों ला बॉटल में बनात हवे, सहकारी समिति में उपलब्ध कराए बा चालू कर दिए है। एमा कतेक कौन सा फसल बा कतेक कतेक उपयोग किए जाना है, जो स्थानीय आपके जो ग्राम सेवक या ग्राम सहायक हवे वो बहुत अच्छा से बताए, ताकि किसी प्रकार के फसल ला कोई नुकसान भी ना हो और व्यवस्था भी पूरा हो जाए। तो निकटतम आपके जो भी हो ही आपके गाँव से जुड़े हुए ग्रामीण सेवा विस्तार अधिकारी हो ही उकर से संपर्क कर सकत है, और वहाँ से फिर जो भी उमन रिकमेंड करी उकर हिसाब से ओला उपयोग किया जाए तो ज़्यादा उचित रहे।
1: चंद्राकर साहब, राउरकर जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें कोरिया जिला आयल और बलरामपुर जिला आयल, सूरजपुर जिला आयल, सरगुजा जिला आयल, इस चारों जिला में कितना किसान लगभग हुए, कितना झंडा सहकारी बैंक लाभ देता है, कितना क्रेडिट देता है, ओला भी थोड़ा बारीकी से बताते हैं।
0: हमारे जो कार्य क्षेत्र में जो जिला हवा है वहाँ पर कुल मिला के लगभग 2,10,000 किसान हवा है सदस्य, उनमें से 1,38,000 किसान ला हमन हर साल लोन देथन, और हर साल किसान भी बढ़त हावे जिला हमन सुविधा उपलब्ध कराता हवन, धान भी उतका उमन बेचते, और अतके किसान ला हमन हर साल खाद बीज भी उपलब्ध कराता हवन, लोन भी उपलब्ध कराथन। पिछले बार 3,58,00,00,000 के लोन बांटे रहन, इस साल भी हमन बांटना हवे लगभग 6.5 अरब रुपया के हमन NCL पास कर डाले हैं, मतलब कोनो किसान या पूरा जिला के किसान मन मिल के 6.5 अरब रुपया के लोन हमारे बैंक से ले सकत हवे।
1: कोई किसान है माला लोन लही से और वाला पूरा सही समय पर वाला भुगतान नहीं करी से, तो किसान पर का व्यवस्था रहेल, का रोमन की तरफ से सुविधा वाला मिलेल?
0: हमारे यहाँ अगर किसान और समिति के बात करें हमन, तो किसान और समिति के संबंध बहुत अच्छा हवे। अगर कोई किसान कोई परिस्थिति बस अगर डिफॉल्ट कर डालते तो वाला हमन किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करन, हमन प्रयास करथन कि अपन परिस्थिति अनुसार पैसा ला जमा कर देवे, हमन कोई नीलामी नहीं करन, कोई गलत कार्यवाही नहीं करन, ये हमारे तरफ से सुविधा हवे। समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन भारत सरकार ऋण माफी की योजना भी देते, जो केवल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक हवे तो उकर सुविधा भी मतलब मिल सकत है। लेकिन किसान मतलब प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की योजना के बदले स्वयं से पैसा जमा करे, ताकि हर साल मतलब लोन मिल सके।
2: बहुत बढ़िया सवाल रहीस और जवाब भी हमें भेटाई से अग्नु भैया, एक संदेश ला और सुन लेते फिर बातचीत करो।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: परसों भैया हम देखा लगातार बात करते हैं, हमारे जो श्रीकांत चंद्राकर जी बैठी हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादिक सरगुजा कर, हमन बहुत सारा जानकारी तो प्राप्त करें। एगो किसान मन कति ले गुआ जानकारी दिए, नवा सुविधा शुरू हुई से ओकर नाम है माइक्रो ATM। यह ऐसा ऐसा जगह में काम करता है जहाँ जब बैंक का सुविधा नहीं है, चाहे किसान भाई मतलब वही जगह अपने गांव में जो सुविधा मिल जाए, बैंक जाना दिन पड़े। तो चंद्राकर जी बताते हैं कि ये माइक्रो ATM का है।
4: माइक्रो ATM एक ऐसे डिवाइस हावे जो एकदम ATM जैसे हावे, जैसे हमारे यहाँ ATM होते दूसर बैंकों के, उमन बड़े बड़े जगह में रहते, हमारे यहाँ माइक्रो ATM हमन समिति में दे दिए है, जो नान अकन एक डिवाइस हावे, ओकर माध्यम से 10,000 रुपये ले भी सकत है, 10,000 रुपये जमा भी कर सकत हावे। अभी तक मोर सर्विस एरिया में जो 133 जगह पर 153 सहकारी समिति हमन दे चुके हैं, जहाँ 4,36,00,000 रुपया की मन पैसा निकाल चुके हैं किसान मन और जमा भी करत हावे। तो ये सुविधा ऐसे हावे कि अब किसान भाई मल्ला शहर आए के या फिर बड़े जगह में जाए के जरूरत नहीं है, अपन सहकारी समिति में पहुंच के वहीं से समिति प्रबंधक से संपर्क करके पैसा निकाल भी सकत है और पैसा जमा भी कर सकत हावे।
5: और CSC कर भी लाभ जो प्रावधान है राउर के अंदर ही है।
4: छत्तीसगढ़ शासन सब हमार सहकारी समिति 153 सहकारी समिति ले CSC के लाइसेंस दे दिए हावे, उमला पंजीकृत कर दिए, तब कोई भी किसान हावे सीधा समिति में जाके CSC के काम करा सकत है, आधार बनवा सकत हावे, वहाँ पर रिजर्वेशन करा सकत हावे, आपके एरोप्लेन के रिजर्वेशन करा सकत हावे, हर प्रकार के ऐसे

0: जो सुविधा जो दूसर CSC सेंटर कर रहे थे वो सुविधा मल्ल दिए गए हैं। अब किसान भाई मल्ल कहीं और जाए के जरूरत नहीं हावे।
1: मतलब किसान अगर कहीं जाना चाहते रेलवे रिजर्वेशन कराना चाहते कराए सकते,
0: बिल्कुल वहां से करा सका था वे, ये सुविधा मल्ल दिला दिए गए हावे।
1: ये सब जानकारी नहीं रहे तो कितना मुश्किल रहे अग्नु भैया।
2: हाँ परसु भैया देखा बड़ा बढ़िया जानकारी भेटाई और हम भी बहुत सारा चीज नहीं जानते रहे सुने तो लगे कि भाई सहकारी बैंक बहुत किसान मन कर हित में काम करता है।
1: आजकल तो ड्रोन स्प्रेयर भी मिलता है, धमतरी तो पहला जिला घोषित हो गई, हमारे यहाँ भी कुछ उम्मीद बनी आए वाला
0: जी, समय। जी जी निश्चित रूप से तो धमतरी जिला में जो शुरुआत करे हावे इफ्को कंपनी दिए हावे वाला।
1: अच्छा
0: और वो पहला ब्लॉक हावे अभी वाला शुरुआत करा था दूसर जगह पे। हमारे यहाँ भी हमन प्रस्ताव भेजे हन तो प्रतापपुर बताया जाता हावे कि प्रतापपुर हमारे जो ब्लॉक हावे तेला पहला व्यवस्था में रखे गए है, अगर आई तो पहले प्रतापपुर में आ जाए।
1: चलो बहुत बढ़िया बढ़िया भी लागी और प्रतापपुर क्षेत्र में और धीरे धीरे सब क्षेत्र में सुविधा मिल जाएगी। अग्नु भैया चंद्राकर जी हमारे साथ में रहें, श्रीकांत चंद्राकर जी इनकर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा में और बहुत बढ़िया से जानकारी देन है। किसान मन फोन भी करें खाद के बारे में, कुछ दिन में और मौका मिली तो राहुल से और जैसी जैसी खरीफ सीजन शुरू हो जाएगी तो राहुल बलाब और कुछ जरूरी सवाल कर अब आज बहुत बहुत धन्यवाद कर
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप मन ला भी और किसान भाई मन ला भी कि अतका जानकारी आप मन लिए है। अब और कोई परेशानी हुई तो सीधा बैंक में या फिर कलेक्ट्रेट में सूचना प्राप्त करके ले सकत है।
2: राहुल कर बहुत बहुत धन्यवाद
1: किसान। ये रही किसान वाणी कार्यक्रम और उम्मीद करता हन कि किसान भैया बहनी मल्ला बढ़िया लगी सोई अग्नु भैया।
2: हाँ जरूर बढ़िया लगी सोई, बढ़िया जानकारी भेटाई सोई, बाकी अब जुआर हर भी कहता है।
1: चौपाल से विदा ली फिर भेटा तो बातचीत करब, चली
2: राम
1: राम राम।
3: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी शक्ति। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म साथी से। आवाजें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुरी की, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत है नौशाद का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है कालना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव की। देवरी भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुग, अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढिंगरा। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। शिंडी से सुरेश मालोदे, वर्षा, श्रद्धा और मानसी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खादिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। परसा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश राजवाड़े, यमहा, पार्थ आदिया। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और समस्त परिवार। मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। जामनगर गुजरात से सावित्री जोशी, बाबू जोशी, प्रिंस कृष्णा, आनंद, रेणुका, हिमेश, श्वेता और तपस्या। अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल, गोपी वर्मा। चरौदा बारनवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत रामानंद कुशवाहा की। मधुबनी बिहार से हमारे श्रोता हैं अरविंद कुमार गुड़िया, कुमारी भाव्या, कुमारी विनिवेश कुमार, नियति कुमारी। केरी कर्नाटक से अन्नपूर्णा।

बड़ी सावित्री लक्ष्मी चंद्रकला काशीनाथ बड़ी श्वेता तपस्या माही रेणुका पल्लवी चैत्र आदर्श तिपन्ना राजू भाई बाबू भाई अमकासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुनेश राम शालिनी रुचिका अनिका मनीष सुचिता चांदनी दीपांशु कृष्णा कॉलोनी गदग कर्नाटक से संगीता हरसिद्धि बाबू हरसिद्धि लक्ष्मी हरसिद्धि जयश्री और हबीब शंकर मंजू काशीनाथ उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव भारती राव बेलाबाई विकास सिंह ओम प्रकाश सिंह धतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नूखेलाल वर्मा ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और श्रेयांश वर्मा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर भानुप्रिया दिवाकर योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा गरिमा शर्मा सिरकोंतगा महादेव पारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े श्याम राजवाड़े परमान राजवाड़े लल्लू बल्लू घनु अमित अभिजीत गोविंद तरुण सकल राम प्रियांशु राजकुमारी नेहा नायरा समायरा खुशी सौम्या उमेश्वरी मुन्नी भाई सोनामती माया राजवाड़े सिमरन राजवाड़े बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति सविता प्रजापति घनश्याम राम हरिशंकर रत्नेश कुमार प्रशांत प्रजापति कालापारा से रामचंद्र गुप्ता पांडेराम राजवाड़े अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े बबीता राजवाड़े धिया राजवाड़े काव्या और मंजू राजवाड़े ग्राम पड़ौली पोस्ट धौरपुर विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से प्रथम प्रफुल्ल खंडा कैरव खंडा गर्वी अनुज सुनैना दास और वेद कुमार मुंडा टोला डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी नेताम चंचल कामेश और माहिर नेताम रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार राम खिलावन सिंह पैकरा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नोमेश सिंगरौल नेहा और वान्या सिंगरौल बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर फिल्म कुछ कुछ होता है का ये प्यारा सा गीत आवाजें हैं कुमार सानू अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की गीतकार हैं समीर संगीत निर्देशक हैं जतिन और ललित

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जन्नत से। आवाज है केके की, गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन बनाया है प्रीतम ने। इस गीत को सुनना चाहा है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने भी की है।

उदयपुर सरगुजा से जिवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी, मती इंद्राणी, माया साहू। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। मध्य प्रदेश से ज्ञानेंद्र सिंह राठौर। मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सदिया। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तनय, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम और मनोज यादव। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, योगेश, मीना, मैंडी, निवान, सौरव, शाइना शर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा, सोगरा, वकार, हैदर, कनीज, सकीना, हसीना, दिलशाद। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी, चांदनी, नंदिनी कुमारी। लसूड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परिकृतिका, रमेश चंद्र डांगी। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिफखा और शिफाली। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं का पसंद हुआ ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर की। जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं स्वरूप आनंद सरजाल। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र।

पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, पी एस नावकर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। रावर करनाल से विनोद लखनपाल। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, प्रणीता, सिद्धांत गवहानकर, अर्जुन गवहानकर। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहानकर, सुमित, ध्वनि, परी, प्रिंस और एकांश गवहानकर। इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर लीजिए सुनिए पत्थर के सनम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस का गीत। आवाजें हैं सोनू निगम, जुबिन गर्ग, नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल की, बोल कुमार के हैं और संगीत राजू सिंह का। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेडे और पवन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदन चावला, वानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता साथी हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, अकोट महाराष्ट्र से बालू पाटिल, सविता नितिन और नलिनी पाटिल, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार और नरगिस खातून, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी, मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, मेरठ से अनिल जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। लीजिए सुनिए इन सभी का पसंद किया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

0: बोल के।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म टेबल नंबर 21 से। गाया है गजेंद्र वर्मा ने, गीत के बोल लिखे हैं असीम अहमद ने और संगीत से सजाया है गजेंद्र वर्मा ने। इस गीत को सुनना चाहा है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू ने। गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पर्ल डिक्रेस्टो और विलिस डिक्रेस्टो। यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, वन मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी। बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी। करनाल हरियाणा से बिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। हरिद्वार उत्तराखंड से राज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोता का पसंद किया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

0: फिल्म टेबल नंबर 21 के इस प्यारे से गीत के साथ ही अब अपनी रेडियो साथी शक्ति को कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश से दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
3: भारत नेपाल

0: सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
0: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को

मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय

0: बढ़ाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी

मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 international at Taunton tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे तनुविड्स मनु फिल्म से, आवाज थी शफाकत अमानत अली की, गीतकार थे राजशेखर, संगीत था कृष्णा का। कार्यक्रम के अगले क्रम में लीजिए सुनिए जब वी मेट फिल्म का गीत, गाया है उस्ताद राशिद खान ने, बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन संदेश सांडिल्य का।

0: risks and opportunities that affect loans, savings, and the wider economy. Appreciate your perspective and your time for us. Thank you very much.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants were Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app News on AIR.
3: Money Talk.
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
5: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद
5: राजेश जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या, और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खास तौर पर क्या फायदा मिलता है।
6: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
5: जी।
6: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
5: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
6: ये मददगार कितनी ज्यादा थी, ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में, अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
5: जी।
6: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
5: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेहड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए, और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
6: सुधार 2 रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
5: जी,
6: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे, क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया और फिर 50,000 रुपए का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है। और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
5: जी।
6: तो दोनों रूप से फायदा हुई। और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, 2 स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
5: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय, कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
6: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन

0: भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं। सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रीज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच सक पा रहे हैं, या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
1: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
0: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी, और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग ऋण चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
1: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
0: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है,
1: जी
0: आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा। आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा,
1: जी
0: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
1: जी जाहिर है। तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है, और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
0: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो क्यूआर कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है, जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो, तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
1: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
0: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
1: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
0: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते, अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है, और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में, जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको वो तो है, उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके। वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या कोई हेल्थ का इश्यू हो, जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहाँ जो क्रिटिकल है वहाँ वो उस पर एक्सपेंड

0: करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
1: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया, तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
0: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो चार बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उनके घर का रहन ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ, और खाने पीने का, एक न्यूट्रिशन जो एक

0: पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उनके घर का ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ, और खाने पीने का एक न्यूट्रिशन, जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली, वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन चारों पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
1: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
0: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना आमूलचूल है। ये आमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता,
1: जी
0: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता।
1: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए, और नए लोग भी इस स्कीम में शामिल होंगे?
0: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था, जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम इसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है, और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
1: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें?
0: जैसे हमारा जो स्कीम है, जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75 75.5 लाख लोगों ने लोन ले रखा है,
1: बिल्कुल
0: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है, और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपेयर कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60% 70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
1: पिछले हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
2: सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर,
1: जी।
2: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर, तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा हो कि पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा, फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा, पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000 20,000 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है, उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला, और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल, तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें, और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कंबाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
1: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल।
4: कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं।

स्वागत है साथियों, आप सभी का कार्यक्रम ई मेल की गूंज में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी शक्ति। श्रोताओं, कार्यक्रम के पहले गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल प्राप्त हुआ है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर और कुशल शाह का। जोड़ा विफल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद सरजाल, दिलीप यादव और मधु शेखर का। एकता कॉलोनी रेहतक से हमारे श्रोता साथी हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता। लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम, शिवम कोलाम। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, पलक लुबना और यश मंसूरी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग से हमारे श्रोता साथी हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता। बीड शहर महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, नंद किशोर घटे और संगीता घटे। लसूड़िया नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह, राहुल। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दोलारी प्रजापति, राम शरण, चंदेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर फिल्म काइट्स का ये गीत। आवाज़ है केके की, बोल नासिर फराज के और संगीत राजेश रोशन का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म वंस अपॉन टाइम इन अ मुंबई का गीत। आवाज है राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा सोनवने, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान डुग्गू, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, पदुमनगर चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद, शाहनवाज अहमद और समस्त सिद्दीकी परिवार, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल।

आइए अब सुनते हैं फिल्म साथिया का गीत, गाया है साधना सरगम मुर्तजा खान और कादिर खान ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है A.R. रहमान ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत मोहम्मद, रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर, पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनित कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा, शाहजी नगर देवगुर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नावकर, निर्मला, विशाल, सोपान तायड़े, नारायण इंगले, आशीष मुरहेकर। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन श्रोताओं ने। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन। नवाशहर पंजाब से गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम और बेबी वामिका ठांडी। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला और विशाल निशा। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अलकबीर। सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। कुरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं पवन कुमार साहू, कांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता और दीपिका साहू। सिद्धम बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह और समस्त निषाद परिवार। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश

ईश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामनी पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई सुफियान और अनस आयजा। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं का पसंद किया हुआ फिल्म रुस्तम का ये गीत। आवाज है अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की, बोल मनोज मुंतशिर के हैं, संगीत है जीत गांगुली का।

कार्यक्रम का आखिर गीत आइए सुनते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। गाया है फरहान सईद और श्रेया घोषाल ने, बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत से सजाया है फरहान सईद ने। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, भीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता मित्र हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पर्ल और विलिस डिक्रेस्टो। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये। सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन।

बेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति और डिकेश साहू। बस्तर छत्तीसगढ़ से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष, शिविक। अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया, काव्या और मंजू राजवाड़े। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मोशा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप।

केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। वक्त हो चला है फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम मन भावन का। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मन भावन में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो साथी शक्ति। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म अनुपमा से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार कैफी आजमी है, संगीत निर्देशक है हेमंत कुमार। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खूमेंद्र और तुषारणी मसिया। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ही हमारे और भी श्रोता मित्र हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा और अनस रेहान। पुणे से पंकज कुमार आर्य, प्रियंका वाड़ोदे, जरूड़ वरूड़ से बाबा साहेब वाड़ोदे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना आलम, नाज प्रवीण। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये प्यारा सा गीत फिल्म अनुपमा से।

फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल की गूंज से अब अपने रेडियो साथी शक्ति को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर

कार्यक्रम के अगले गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं उमरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बास अब्बासी, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन, धरसीवा से चेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव, कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास दीवान, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य, सानवी दीवान, बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, भरी टोला डोंडी बालोद से नमित कुमार, गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू, मुरली, गौतम, बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोतागण के पसंद पर फिल्म अमर प्रेम का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। बोल है आनंद बख्शी के और धुन आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं राजापारपुर लकड़ापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी और रूपमती मरकाम। रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ठाकुर, ज्योति रेयांश और गुड़िया ठाकुर। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक दिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी।

आइए अब सुनते हैं फिल्म प्रेम गीत का गीत। आवाज है जगजीत सिंह की, बोल इंदिवर के और संगीत जगजीत सिंह का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश और सौरभ शर्मा। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल। आइए सुनते हैं इन सभी का पसंद किया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म किनारा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत निर्देशक हैं आरडी बर्मन। इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी और हनी ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन, सोनू, वंदना श्रीवास्तव ने। नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले ने। लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम बुशरा ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी अभिजीत गवहाणकर, सरिता, प्रिंस एकांश गवहाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता गवहाणकर। बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवहाणकर।

0: फिल्म किनारा के इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम मन भावन से अब अपनी रेडियो सखी शक्ति को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी आपने सुना मन भावन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

0: इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations